0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: जी मैं ताहिर नैयर, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
1: तुल्लाहे वा बरकातुहु। संगीतो दोस्तों, बहनों, भरारो, सजनों, बेटो ते मित्रों, मैं अजीब खान प्रोग्राम अपना ग्रह कीर्तन सुनी खिदमत च हाजिर होया। थोड़ा जिहा जनाब हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब प्रोग्राम में शामिल सलाम अर्ज करने। इन्हें तो अलावा जनाब नंबरदार राजा सफैल अहमद खान साहब नाल बंदो साडा प्रोग्राम में शामिल सलाम मोहम्मद मकसूद आप रठवा मीरपुर कश्मीर जनाब मौजूद है। तो इन्होंने बुझने पाले पियो गीत करने जनाब फैजाद सफेद ना खान खान साहब उस तो बाद जनाब नंबरदार गुलराज साहब ते उस तो बाद राजा मतरूब खान साहब तो बाकी जितनी भी थोड़ी टीम ही उन्हें सारे ने ना बिस्मिल्ला बाकी टीम सारी जनाब बिस्मिल्ला।

96.7 is thinking तुसां आस्तै पेश करने आं जनाब अपनी मिठी मिठी मौज 7 FM। अगर तुसां साढ़े स्टूडियो स्टूडियो विच नंबर 4261-8181 ते जे तुस शर्मिले जोड़ना चाहने कि थोड़ी आवाज़ साढ़े तक पुज्जे ते व्हाट्सएप पर सुख सुनेहा लिखी दा जनाब भेजी छोड़िया मास्टर मोहसर होने तरह 0793984939। साढ़े प्यारे भाई जनाब चेयरमैन मोहम्मद महमूद खान साहब प्रोग्राम में शामिल है इन्होंने तलक गगनाड़ा कोटली आजाद कश्मीर आल मकीम शफील हमेशा साड़ा साथ देने जनाब ते आखने जी कि नाइस प्रोग्राम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। ते हुण ए अगले माइये ते टप्पे चेयरमैन जी स्पैशली तुसां आस्तै ते बाकी जितने भैणां भ्रा साढ़े आस्तै मौजूद है उन्होंने सारे आस्तै बिस्मिल्लाह जी चेयरमैन जी।

0: जी,
1: मेरे भाई की जो बाड़ी थी उस पर पत्थर दिया फौरन।
0: अच्छा,
1: तो मुझे दिया।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि मैं बचा था, हो सकता था मेरे भी तबीयत खराब हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मुझे नहीं छोड़ा। चंद सवाल किए, याद तो नहीं हो, लेकिन तो मतलब साथी साहब और जितने भी थे वो खत में सारी रात कुरान पढ़ते रहे
0: जी।
1: लेकिन
0: जी
1: जो हमारे श्री हजरात वहाँ जाते हैं
0: जी,
1: बहुत बड़ी ज्यारत है, बहुत बड़ी। तो जनाब मेरे भाई साहब की कब्र है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा,
1: उन्होंने उसको वहाँ दफन किया।
0: ओह माशाल्लाह।
1: और फिर बता दूँ कि एक बड़ा लिख दिया खत।
0: अच्छा,
1: कि भाई इसकी मदद की जाए जहाँ भी जाए।
0: अच्छा,
1: तो एक के ज़माने में वो ब्लास्ट हो गया था, तो बैठाया कराची आ गया।
0: अच्छा अच्छा, कराची आ गए
1: और उसके अनशा।
0: अच्छा गंगू जी। अच्छा,
1: तो पहुंचा।
0: अच्छा,
1: पैसे तो हमने तो सोचा ही नहीं था।
0: दो महीने में
1: खैर इस पर कर लिया।
0: अच्छा,
1: और उसने इस हाथ पर इसने मारा ना
0: जी,
1: तो बता हमने क्या बताया उसे कि वो चले जा रहा हूँ, लेकिन वो इससे उस वो हाथ में डर नहीं
0: होती
1: उसी मारे थे। मैंने उसे कहा कम मार खुदा तेरा, तो वो जाने बंद कर दिया मेरे साथ। हंसी वो गंगी तो भाग गए।
0: अच्छा,
1: तो थानेदारों नहीं कुछ होगा ऐसे। अच्छा, क्यों था क्या था। तो मैं उसकी इतना बच्चा है और इसको कुरान पढ़ता है सारा।
0: अच्छा,
1: उसी कि मुझे उठाया।
0: अच्छा,
1: वहाँ से उसका नाम मैं भूल गया कोई।
0: अच्छा,
1: हाँ, और ड्राइवर से कहा कि इनको अटक में उतारना उसको कैमलपुर के
0: कैमलपुर। बिल्कुल,
1: तो मैंने उसको उतारा, तो उसने मुझे वहाँ उतारा नहीं। तो साथ मेरे गमगीन से जब घर गया तो मेरी खाला बड़ी बुजुर्ग थी, बहुत बुजुर्ग थी।
0: अच्छा,
1: डालना गट वगैरह ये तो।
0: अच्छा अच्छा, दो साल कहाँ
1: दो साल क्या बताएं।
0: अल्लाह
1: तो, सखावत और सब ये से।
0: अच्छा अच्छा,
1: लटकाया तो किस सब लड़कियां करती शादी पहनो।
0: अच्छा अच्छा,
1: शादी जोड़ा देर मैं टांगा था तो किधर गया जो इधर पर लटकाया था कि वो तो मैंने
0: दे दिया। माशाल्लाह।
1: फिर तब पता चला कि भाई वो मेरे भाई फौज हो गए, ये तो बेचारा बाहर वो फिर चले क्या पता ही नहीं लगा उसको बेचारे का कि कैसे कहाँ चले गए। तो किताब
0: बड़ी दर्दनाक है जी। कोई बात नहीं, ले लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: उसके बाद واپس آئے تو والد صاحب مجھے مریض ہو گئے, ایک داخان مسجد میں میں نے قرآن شریف سنا ہے.
0: اچھا اچھا اچھا.
1: وہ میرے والد بڑے گورنر
0: جی,
1: تو کہیں انہوں نے تو عید کی نماز لیٹ پڑھاؤ.
0: اچھا اچھا اچھا.
1: ہماری والد صاحب یہ سنا والد صاحب ان کے کوئی بڑے بڑے وہ تھانے دار کو کہنا تمہیں شرم نہیں
0: لیٹ کر رہے
1: آئے تھے نماز کے لیے آئے گئے نا.
0: جی جی جی بالکل
1: جی. تم
0: اچھا
1: اس کے
0: ان تک پیغام دیا. ٹھیک
1: جو تھا وہ
0: اچھا اچھا اچھا اچھا پیغام پہنچا دیا ان کو تک. جی جی جی.
1: رب نشر ملاقات کی لاہور سب سے انسان کا.
0: اچھا اچھا. کتنی عمر تھی اس وقت؟
1: میرے 16 سال کی.
0: 16 سال ماشاء اللہ.
1: آپ کو پتا حدود ہے
0: جی.
1: کہتے ہیں یعنی ابتدائی طور پر
0: جی جی.
1: ایک ہوتا ہے سب آخاری جو سات قراتے جانتا ہے
0: جی جی ماشاء اللہ.
1: وہ تو میں نے وہ استاد سے پڑھی اور اس کی جغرافی مشہور بہت مشہور مدرسہ
0: جی جی جی.
1: جس سے ہزاروں طالب علم ہر سال نکلتے ہیں
0: بے شک.
1: تو میں نے حدیث کیا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا.
1: اور
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
1: تاثیر ہوا.
0: اچھا اچھا. قاری ٹھیک ہے. جی جی جی جی.
1: لیکن میں اللہ لگایا تھا وہ ہم نے کیا اور اب بھی کرتا ہوں
0: ماشاء اللہ.
1: تو انار کلی میں خطیب ہو گیا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا.
1: انار خطیب تھا. 4 سال میں نے وہاں گزارے
0: امامت وہاں کی. اچھا اچھا.
1: امامت اور خطابت بہت. اور میں اشعار بھی پڑھتا تھا خود بہت.
0: جی جی جی.
1: تو پھر لگ گیا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا.
1: اور ہاں ایسی سنکاری میں رہا کا زمانہ.
0: اچھا ماشاء اللہ. ایچ ایس این کالج میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا.
1: تو جو ہمارے صوبہ سرحد کے جیسے وہ سرحدی گاندھی کہتے تھے
0: جی
1: افزادے تھے وہ پرنسپل تھے.
0: اچھا.
1: بڑے سخت گیر تھے وہ. تو اعلیٰ ترین گزارے. تو میں خود بھی کہتا تھا وہ ہمارے پروفیسر لیکن باقی ہر بات نواز تھی.
0: ٹھیک.
1: खिलाता है
0: जी जी
1: इसको।
0: अच्छा
1: तो मैं दूसरा आदमी था वो मुलाजिम था।
0: अच्छा
1: तो वो घबरा
0: था अच्छा तुम कहाँ यहाँ क्या कर रहे हो
1: कि मैं बड़े हैरान हो गया कर्जो बैठते हैं तो वो छी थी
0: जी जी
1: तो उसके ऊपर बैठी हुई थी वहाँ बैठ गए कहने और फिर है गुजारा कर सकेंगे ये आपकी हमारे जो टाइम था
0: जी जी जी
1: बाकी जो था उनको गार्डनर को वो बाग साफ उधर साफ
0: बाका
1: और ट्रेनिंग होती है
0: जी जी जी जी
1: घुड़सवारी होती है
0: ज़ारे अच्छे से ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी क्योंकि वह अंग्रेज़ों का ये बना हुआ था ना जी
1: अंग्रेज ट्रेन कर रहा था वहाँ तो
0: जा नहीं सकते थे
1: थी एक स्टूडेंट का खर्चा एक स्टूडेंट का
0: जी जी जी
1: उसके हाउस मास्टर होता था वो अंग्रेज थे
0: जी जी जी
1: तो वहाँ एजुकेशन कॉलेज इसने
0: नो नो नो अच्छा
1: तो आपको हमें बड़ी बड़ी पगड़ियाँ लगे आपका कोई सिफारिश करने वाला
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: सब फलाने जी की है तो कि आप किस पहने
0: अच्छा
1: बातें की तो मैंने उनसे
0: जी जी जी
1: तो उन्होंने बात की मैंने जवाब बात दिया इसी तरह इस तरह वहाँ सर कहा जाता है
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: तो उन्होंने तो सीधी सीधी बात की कि जनाब अगर ये ऐसा है तो ऐसा है फलाना ये वो तो मैं इंटरव्यू देकर चला आया दूसरी खता गया भाई आवाज़ है आपको पापा
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पक्का हो गया जी माशाल्लाह
1: वैसे बहुत की आवाज़
0: जी जी जी जी
1: क्योंकि जी सरकारी का नाम था ना जी तो जहाँ भी जाते थे ना वो बस
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो काफ़ी दोस्त फौत हो गए बड़े बड़े लोग जो थे नवाब सब
0: करे साहब ये तो उस वक्त की क्योंकि आप 20
1: तो फिर मैं क्या
0: बात बता
1: इस्लामाबाद कुछ थे हमारे पास ठहरे
0: अच्छा
1: तो पासपोर्ट बना था तो मैंने ये मुश्किल काम नहीं है, अभी कल चलेंगे, मैंने कहा वहाँ बना लेंगे। तो कहने हो जाएगा, बेगाम रहे हो जाएगा।
0: अच्छा
1: तो जान पहचान पिंडी में जो थे उन लोगों से, तो वहाँ गए, पासपोर्ट ऑफिस नए नए आया था, तो मैंने और मैंने कहा यार ये मेरे दोस्त हैं, कुछ ख़ास बातें बता दे, मैं खुद अपने साइन करता था ना।
0: अच्छा
1: उसको मैंने कह दिया पासपोर्ट, दो घंटे का पासपोर्ट बन गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उन्होंने कहा हमें वहाँ थे, तो मैंने कहा वहाँ क्या करूँगा, क्योंकि वो दीन की खिदमत करनी है। तो मैंने कहा चल देख, मैं तो भूल गया।
0: अच्छा
1: आ गया।
0: अच्छा
1: ब्रेड फूड उसका नाम था, मुझे याद है। तो वो खत लिखा कि भाई वी नीड, वो खत अभी तक पड़ा हुआ है।
0: अच्छा
1: वी नीड यू हियर, यू कम हियर। तो मैंने खत लिख दिया जनाब लाहौर जो एम्बेसी है
0: जी जी,
1: उन्होंने मुझे खत भेज दिया यू कम विद योर पासपोर्ट। तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ था।
0: अच्छा
1: इंग्लैंड का किसको
0: यार, मैं तो बिल्कुल जी जी
1: जी ऐसा
0: पलटा
1: सुनकर तुम भी याद रखोगे। तो लाहौर तो आ रहे थे, क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जी छोड़ यार मैं किसी आदमी से मिलना है।
0: अच्छा
1: तो इतने मेरे कांग्रेस ने कार पार्क की, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा वहाँ तो सी दिस जेंटलमैन, तो वो
0: भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: अंदर गया था पासपोर्ट, तो इसने कहा इसमें तो यू कर, तो मैंने कहा दस नजर
0: वो कर लेंगे
1: ये तो डालूंगा मुकदर क्या क्या करती है। तो अल्लाह बेहतर तो आज मुझे वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसने
0: अच्छा
1: मशीन और सेटलमेंट
0: वो सेटलमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा उसी वक्त वहीं से ही माशाल्लाह
1: जी
0: जी जी
1: टिकट था
0: ठीक
1: और जा तेहरा अपने कायर फिर सारा फिर पेरिस आता था
0: ठीक
1: फिर पेरिस इधर तो टिकट ली घर वालों से कहा भाई मैं जा रहा हूँ। तो बोलो क्यों जा रहा कमाना मेरी मजबूरी हो गई
0: जी जी जी जी।
1: तो लेकिन हम भी जो है अल्लाह बख्श बड़े अच्छे आदमी थे सही जगह था। मैं बाहर रहा कराची
0: अच्छा
1: उनके पास, तो फिर कहते कि यार आ जाओ वापस आ जाओ क्या सही मानो में
0: जी जी जी
1: वो
0: 64-65 का दौर हुआ होगा
1: हाँ?
0: किस दौर में आप यहाँ बरतानिया में आए?
1: बरतानिया इसी पर आ रहा हूँ
0: ठीक ठीक।
1: तो मैं और वहाँ से चला, तो आप ब्रेडफोर्ड तो मैं नीचे कर दी
0: अच्छा
1: ये जब वहाँ आया तो उस जमाने ब्रेडफोर्ड में एक मस्जिद थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: उसे
0: स्ट्रीट हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हो गए हमारे।
0: अच्छा,
1: कुछ हमारे वैसे के मशहूर गांव है वैसा, तो हजरत करीम। तो जब मैं आया तो मैं बैठा हुआ था ऐसे, अब वो सुनी
0: रहता
1: था।
0: अच्छा,
1: यही अठारह काम किया। ये जो शर्माता हूँ कभी कभी, कहता हमारे बाबाजाद ने कितना काम किया यहाँ।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: ये
0: जी
1: वाह किया क्वीन से। तो 67 में यहाँ आया मस्जिद
0: हाउस स्ट्रीट वाली।
1: हाँ, वो तो वो वहाँ मुझे मीटिंग में बुलाया, कब हाँ मैंने ये हैला बताया।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये उस वक्त से मैंने वहाँ शुरू किया था और अच्छा, वो मान गए थे।
0: 67 की बात है,
1: 67 की बात। जो काम हलाले का जो काम था वो मैंने हल किया उनका।
0: अच्छा अच्छा,
1: हलाला करो मुसलमान।
0: जी जी जी।
1: तो उसके वो जो बैठे बातें हुई थी कि उनको लेंगे
0: रखेंगे फिर
1: सेक्स। अच्छा, तो मैंने ये सेक्स से क्या लेगा फैलों ने। अब वो था तारीख था।
0: अच्छा,
1: वो और जो
0: ठीक,
1: अब मुझे बुलाया था उन्होंने, तो अब हम तो कहना ही कहते रख लेंगे फिर निकाल देंगे। मैंने कहा ये करेंगे मिजाज है।
0: जी जी जी,
1: कोई झगड़ते
0: लफड़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता।
1: तो आए
0: अच्छा,
1: उनको सुना होगा कि तू जरूरी तो वो पद देंगे। मैंने कहा मैं आप पद नहीं क्या कर लेंगे, बंदर बोल पे क्या करूँगा।
0: जी जी जी
1: जी, तो मैं सबको बताना शुरू किया वहाँ
0: वहाँ लीड्स में
1: लीड ले सब
0: आया माशाल्लाह।
1: उसमें एक आप तब है दे
0: ओ माशाल्लाह
1: हैं जो तो हमें बच्चों को कि तुम मानो ये हमारी पार्टी है ना कि ये फलाना है फलाना है, ये इस मुल्क में निकालो, ये जहन में ना हो, पहले मुसलमानों फिर पाकिस्तानी फिर आप जरूर पड़े तो कर लेना वैसे नहीं। तो उस वक्त जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो स्नान भगवान
0: जी जी जी जी
1: आपके भगवान है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: थताल के साई पर पहाड़ी मैं वहाँ गया। अच्छा
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो किस्से में किस्सा आ जाता है क्या करूँ यार। तो क्या करो नेशनल बैंक।
0: अच्छा,
1: तो हम पता किया वहाँ तो वो
0: चार एक लाख अच्छा इसी मिल जाए लेके जाऊंगा
1: को शाम को खाना खा रहे हैं तो वो काला खान पानी थोड़ा सा गदला
0: अच्छा
1: तो मैं यार तो
0: समीर अभी ये चौधरी बोरसान साहब की बात कर रहे हैं बाबू के
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Saim Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बा एतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422

0: साहब ठीक ठाक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: आपकी दुआएं।
0: शायद बोलना पे
1: जी जी जी शायद नज़ीर साहब आपने हाजी नज़ीर साहब को जी जी शायद
0: कारी साहब रखी सामन करना
1: जी वाले को
0: कारी साहब रखी बड़ी थैंक यू करना के मेरी जिंदगी भी चलाना उन्ना आसानियाँ ऐसा सारी कम्युनिटी वास्ते जाना हम जाने
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
0: ऐसा ही लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप है मेरे वाले साहब रखना वाले साहब इस्लाम दुआज करने
1: जी जी बिल्कुल जी जी जी यही बात है। शाहिद साहब जिस वक्त आजी साहब कारी साहब हमारे स्टूडियो में आए ना तो सबसे पहले जब उन्होंने नाम लिया ना वो हाजी नज़ीर साहब का लिया था। कह रहे थे कि इस कमरे में बैठे इस कमरे की बात हो रही थी कह रहे थे कि यहाँ ही वो उस वक्त कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी तो हाजी नज़ीर साहब का नाम लिया। माशाल्लाह दिल के साथ आपका उनका लगाव है एंड यू राइट एक्चुअली दीज पीपल टू चेंज द वर्ल्ड फॉर अस शायद उनके बेटे हैं शायद शायद नज़ीर उनके बेटे जी जी बेटा बात है
2: शायद
1: उनका बेटा
2: अच्छा
1: हाजी नज़ीर साहब का साहबजादा
2: के लिए बिस्कुट
1: जी जी जी जी ये बात
2: तो थोड़े से पैसे मिल गए फिर काफी
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: तो हम तक दो आज
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कारी साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर रिंगिंग थ्रू रियली अप्रिशिएट इट जी। कारी साहब उस वक्त बात ये कर रहे थे लीड्स की बात
2: जी पाकिस्तान से दोबारा एकदम हो गया
1: जी जी
2: में आज सबसे बड़ा साथ में जो हुआ वो निकाल का हुआ अभी
1: अच्छा
2: तो अप्रैल जो 17 तारीख को उनका इंतकाल हो गया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: तो रात 3 बज गए तो घूमता
1: अच्छा
2: तो मैं टेलीग्राम की वही फलाने डॉक्टर साहब जो है आप पिंडी में उनको ले जाओ।
1: अच्छा
2: वो उससे पहले दफना चुके थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: नहीं तो फिर मैं एक लड़का था
1: अच्छा।
2: उससे तो वो भी अकेले गया बची में उसका इंतकाल हो गया
1: जी जी जी जी जी
2: तो बारह कट गई तो जब मैं धनफर मार कर नहीं आ जाओ तो मैं चला गया तो पैसे तो थे नहीं
1: जी जी
2: आप पैसे जमा कर लेंगे
1: अच्छा
2: तो फलान जो मैं तो मुझे तो बार ये समझो कि मैं सदमा हुआ और
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: तो उनको पता नहीं और एक अपना विचार रहा और सेलर में था.
1: अच्छा.
2: उसके एक मियाँ खान साहब थे, वो ये चार आदमी ये बिचार सारा
1: आपने काम में मसरूफ.
2: तो वापस आए, आप पैसे तो नहीं है ना.
1: जी जी जी.
2: तो अब सोच रहे वो आते दूसरे.
1: अच्छा.
2: तो इनको नहीं निकाल, ऐसे नहीं निकालो.
1: अच्छा. जो आपके जगह मुतबादला.
2: हाँ हाँ
1: ठीक.
2: तो वो कर आप यहाँ आज मस्जिद बना दी, मैं दूसरी मस्जिद उसको कहते हैं.
1: जी जी जी जी.
2: जरूर है
1: ये बात है.
2: तो वहाँ और तो मैं चले गया.
1: अच्छा.
2: वहाँ करा श्री राय का एक आदमी के साथ रहने लगा.
1: अच्छा.
2: तो कह नहीं आप थे, तो मैंने कहा वो क्या
1: अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट.
2: अच्छा. वहाँ तो मैंने कहा करे सर लोग कहते आप. मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत कौन. मैंने खड़ा हुआ वापस चले गया. तो मैंने खाना है कि आप कहते मैं भी करूँगा.
1: ठीक.
2: तो वहाँ ब्रेडफोर्ड में.
1: अच्छा.
2: वहाँ
1: फाउंड्री में गए. ये कौन सा भाग
2: है. तो मैं तो कहने ये सर मैं कई बार जा.
1: अच्छा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तुम्हारे लिए नहीं है.
2: तो उनका बात ठीक है. अंदर आ जाओ. अंदर नाक दिया तो सारा गन. तो मैंने कहा आज कहाँ जाओगे.
1: मेरे बस कर रही है. ये भी नहीं है.
2: फिर छोटा से काम दिया तो कहिए उसमें मिसालें लाओ. उसने मदद की. हैरान था.
1: अच्छा.
2: बता.
1: अच्छा.
2: बुला रहा था.
1: अच्छा.
2: तो देख रहा था वो आए पास. हम कहा क्या माय नेम. सारे टू कम हियर यू डिड यू कॉल माय नेम. तो कहा आई एम सॉरी. मैं कहा
1: कहते होंगे ये कौन से आ गए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
2: साथ उसने मदद की. क्या तो जब अब मैं जारी रखूं.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैसेज देखना.
2: तो वहाँ एक काम किया तो
1: अच्छा.
2: मैंने कहा तो जगह दी कि ये आप कर सकते हैं. मेरे घर तो मैं वो तो आसान काम था. मैंने नंबर लगाने थे.
1: ठीक.
2: तो
1: अच्छा अच्छा. ये
2: آپ کو اتنا لگا دیا. انہوں نے
1: جی جی جی
2: تقریباً کیا کہتے لاکھ ہے.
1: اچھا
2: بہت پیسہ بچایا. ایک مٹھی میں چھوٹا کام تھا اس میں.
1: اچھا
2: بائن کر سکے.
1: اچھا
2: یہ کا ہے.
1: اچھا اچھا اچھا
2: تو میں نے کہا اور چاہ تو میں وہ آپ کو ٹھیک کر دوں گا. میں نے وہ ٹھیک کیا تو وہ کہتے واؤ ہم نے چل تو وہ جو ہم سے کہا وہ اٹلی
1: جی جی جی
2: تو میں کہا دیکھو نا یہ کچھ کام سیکریٹ ہوتے ہیں نا گوئنگ ٹو ٹیل یو.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا
2: دیکھو نا اللہ پاک کیسے کھولتا ہے
1: کیسے راستے کھولتا ہے. بالکل
2: جان بھی لیتا ہے.
1: جی جی جی
2: چکر آئی.
1: جی جی
2: ہاں جی دو
1: چار. اچھا وارم بریڈ فوڈ آپ کے پاس.
2: ہماری مسجد خالی اور آپ یہاں کام کرتے ہیں آپ عالم ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں. میں نے کہا یار میں کام کرتا ہوں چھوڑو. ہیں اچھا اب میرے پاس پیسے بھی آ گئے دو گیا. تو اس کے بعد پھر آ گئے پھر گئے. پھر میں نے سوچا یا اللہ
1: ایک
2: طرف پیسہ اور ایک طرف دین ہے.
1: دین کی خدمت ہے
2: تو دین میں ساری زندگی کیا ہے. آبا و اجداد میں علماء ہیں تو یہ مسجد نہیں چھوڑ سکتا
1: ماشاء اللہ.
2: تو میں نے وہ 25 پون چھوڑے اور وہ مینیجر پلیز ڈونٹ گو. میں آپ نہیں سکتا ہوں تو تب اس نے چھوڑا مجھے.
1: اچھا اچھا
2: میں نے کہا لیکن دیکھو نا کافی مدد کی.
1: ہاں بالکل ضرورت بن گئی نا
2: اور
1: کر لیا
2: اپنے کمرے.
1: اچھا اچھا
2: باقاعدہ. تو ہاں آیا جب
1: کاری صاحب آجیف صاحب کی بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کوئی میسیجز بھی آئے ہیں. کلیم خلیل صاحب انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہتے ہیں ماشاء اللہ لولی پروگرام. شاید مزید صاحب ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے یقیناً وہی ہیں. اگر کوئی اور کہتے ہیں سبحان اللہ لولی پروگرام. اور تیسرے ہیں نذیر لایا نذیر انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہتے ہیں بہت بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے تھرلی انجوائے پروگرام. اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ شکریہ آپ بڑی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بس باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی جی حاجی جعفر صاحب کی بات
2: تو اب کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا.
1: جی جی جی
2: کہ بھائی تو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں.
1: جی جی جی
2: لیکن معلوم تو نہیں تھی یا تو سر ذمہ داری تھی بیچارے. تو خیرات کرو مودی صاحب خیرات سر پکڑو اپنا.
1: ٹھیک ٹھیک
2: کیسا جی سر مل گیا نہیں میں پردہ باز والا رہی اس کے پاس کیا لگتی. نظام یہی تھا تو بولے دیتے.
1: اچھا
2: ہر یتن تو مجھے حساب سے میں نے کہا یہ بات ایسی ہوں گی.
1: اچھا
2: تو یہ ہمارے 10 کلو یہ 2 پون دیں گے.
1: ٹھیک جی جی جی
2: میرے ساتھ ایک जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ कपड़ा वही है।
2: तो तुम भी चाय पीते हो ना? हो ना,
1: ये बात है।
2: ठीक है, तो अगर
1: तो ये क्यों दे,
2: तो ये कैसे देगा? वो पठान थे का? वो किसी पठान
1: करता है, एक जुबान होती है।
2: तो एक दिन सब इकट्ठे
1: जी जी जी
2: तो नाराज साथी तो हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया
1: जी जी
2: सुबह वो इकट्ठे में यार सारे इकट्ठे हो गए, खैर तो है।
1: अच्छा
2: मैं करना है कर साहब, मैं की कही कर साहब तो मंदे नहीं। अल्लाह बख्शे सब अच्छे हैं, अपना अपना मिजाज होता है।
1: जी जी जी।
2: तो उन्होंने मैं मेरा सोचते थे मैं बताता उनको, तो उन्हें बैठ गए, मैंने कहा नमाज थी।
1: अच्छा
2: ये जो नमाज पढ़ाई है ना ये तनख्वाह वाली है,
1: ठीक,
2: इससे बाद मैं पढ़ाऊँगा, कोई तनख्वाह वनख्वा नहीं होगा, अपने इमाम का काम करो, अपने इमाम ले आओ,
1: बंदोबस्त कर लो।
2: बात खत्म हो गई, अब क्या करते हो? मुझे शिकायत कि उन्होंने जान बार बार कहते जी जाओ, मैं जान पहचान पर किसी को जानता नहीं हूँ, आया हूँ
1: जी
2: जी नहीं, यहाँ है ट्रेनिंग का, वहाँ मैंने तकरीरें की अंग्रेज़ों के साथ कि हम मुसलमान हैं, हम ये बाकायदा हाँ पहले जब मैं आए उस मस्जिद में, तो मैं हमारे करते कि हम
1: सिर्फ मिर्ची ढूंढने के ठीक
2: तो किसी
1: डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा
2: तो के पास हम गए तो
1: अच्छा मिर्चे
2: तो
1: केमिस्ट अच्छा
2: तो मिर्ची और ख्याल रखना की आंखों में और ज्यादा ना खाना नहीं थे तो
1: करे साहब आप उसके बाद चैपल वॉक मस्जिद में आप वहाँ इमाम खतीब रहे।
2: हाँ जी,
1: क्योंकि वो
2: आपके जो थे
1: जी
2: खुदा बख्शे बड़ा अच्छा आदमी था, तो मैं क्या करूँगा कर? मैंने कहा मेरे कैसे काम शुरू करूँ, पैसे तो है नहीं, पैसे लेकर वापस आ जाए
1: जी।
2: तो उन्हें
1: अच्छा
2: औरतों की शलवार टाल चुकी थी तो छोटा सा बक्सा दे दिया, तो वो मैंने जनाब यहाँ राधरा में आ गए तो दी।
1: अच्छा
2: वो गाड़ी साफ थी तो वो क्या
1: अच्छा
2: तो अब कि आई वांट सो टाइट द मिरर
1: अच्छा
2: अब राजी तो वो
1: अच्छा
2: एक तो वो ऐसे उसमें कहने का हुक्म टू यू
1: अच्छा
2: आई एम टॉकिंग टू यू
1: अच्छा आ तो जो जी जी
2: तो अब को
1: ठीक ठीक
2: अब ओके इस आई एम मैंने कहा यार ये बात देख हजरत नहीं थी ना हजरत और लड़की मालूम को देख कुरान का
1: जे जे ना
2: अपनी आंखें नीचे करो तो अब कर रहा है तो बाहर तो उसको फिर मैंने कहा तो सर इट इज वेरी बट वी टॉकिंग टू यू एंड यू लुकिंग डाउन यू तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच उसको तो उसने दिए थे मैंने हम और काम हर साहब आप भी मुझे कहाँ पर
1: ठीक ठीक ठीक लिए निकाल दिया ऐसा अभी ब्रेक का वक्त आ गया अभी फिर मिलेंगे
3: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
10: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब ही नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्तै एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ते मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम आले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होवे या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737 5547 या 0778485094।
7: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

0: قاری صاحب کو میں نے جس وقت بچپن سے دیکھا کہ جس وقت یہاں چپل ووک مسجد میں ہوا کرتے تھے, ہمارے روتروں میں جانے کا قاری صاحب ایک وجہ ہوا کرتی تھی. اتوار کو نہیں, ہم اتوار کو اپنا ہمارے اپنے جو بھائی جان تھے وہاں دفنائے ہوئے, ایسٹ ہیرنگٹن برتھ انڈو وہاں دفنائے ہوئے, اپنے والد صاحب کے نہیں وہاں جاتے تھے, پر واپس جب آئے تو ضرور ہم نے چپل ووک مسجد میں اس وقت جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت اسی مسجد میں آپ امام اور خطیب تھے. پھر وقت ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پھر رودرم کو چھوڑ کے شیفیلڈ آئے, شیفیلڈ میں مدنی مسجد میں آپ نے بہت ہی عرصہ وہاں امامت کی, یہاں نور الہادی مسجد میں آپ نے امامت کی
1: 30 سال.
0: 30 سال ماشاء اللہ بہت بہت بڑا جی جی ماشاء اللہ. ہم اس چیز کے گواہ ہیں نا جی, ہم نے سنگا. لیکن یہی کام آپ نے نہیں کیا, امامت تو آپ الحمد للہ کرتے, لیکن پڑھے لکھے تھے, آپ نے کاروبار کیے, آپ نے اپنی ماشاء اللہ کافی سارا بزنس تھا. ایک وقت تھا کہ چار آپ کی دکانیں
1: تھیں. نہیں دیا
0: جی جی جی جی,
1: کئی مینیجر نے میرے
0: جی
1: اپنے اچھا میں نے کہا
0: حلال
1: کمائی
0: بالکل.
1: میں نے کہا ڈونٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. میں ہم کہتے ہیں خیال نہیں آیا خط
0: گم گیا. اچھا ویٹ پیکٹ ہے
1: تو اسٹال پہ صفائی کر دیا تو اس کو ٹھک سے میں نے بھی کیا, پھر دوبارہ ہی پھر تو میں نے اس کو اٹھایا دیکھا تو اس پہ نام لکھا ہوا تھا, اس میں 1200 پاؤنڈ تھا.
0: 1200 پاؤنڈ
1: تنخواہ کی وہ اسٹاف کرتی.
0: اچھا اچھا اچھا,
1: نام پتا کتنے پیسے ہیں اس میں, بند تھا نا سیل تھا.
0: جی جی جی,
1: تو میں نے خیال سوچا انگریز میرا کافی گزرا ہے نا.
0: جی جی جی, یہی بات
1: ہے, سارا کام کیا ہے.
0: جی جی جی,
1: تو جب مجھے یاد آیا ہائے ہائے, میں نے کہا وہ سوچے گا میں نے مورگیج. پھر وہ کہے کہ میری بیٹی کو 5 پاؤنڈ, دوسری بیٹی کو 5 پاؤنڈ, دوسری 5 پاؤنڈ, وہ تو
0: یہ
1: میرا بجٹ ہے کھانے پینے کا. تو جب تو جب مجھے خیال آیا تو میں یا اللہ میں اس
0: کو
1: یہ میں ڈال سکتا ہوں. تو اب تو میں
0: I
1: received this packet and I signed it there. So اس کو میں نے کہا یو سائن ہے ہم سائن ہے, اس نے سائن کیا. تو اس کے بعد یا پھر کونسل نے اس کو بھیجا تو مجھے دیکھا
0: دکھا
1: دکھا تو
0: खर साहब, आप मस्जिद की बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी बहुत ही शान और बड़े अच्छे अंदाज ने आपने किया, जो रिलायंट नहीं रहे मस्जिद पे अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप काफ़ी मुतारक रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन में उसमें मुतारक रहे हैं, चेम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें आप मुतारक रहे हैं, पुलिस के उस ज़माने में जो पुलिस कमिश्नर तो बाद में बने हैं, लेकिन पुलिस के साथ वो लेजन पैनल वगैरह वो करते थे,
1: उसके साथ ही मेरे वास्ते हुआ,
0: उसके साथ आप
1: रादर में काफ़ी सारे
0: उनके साथ। यहाँ की बात करें तो जो जिस वक्त ये बिल्डिंग खरीदी गई उस वक्त एक स्टीयरिंग ग्रुप बना गया जिसमें आप शामिल थे, रोटेशनल जिस वक्त यहाँ के चेयरपर्सन आप उस वक्त इसके चेयरपर्सन भी अल्हम्दुलिल्लाह रहे, ये सारी चीज़ें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी आपको इज्जत दी, इतना मुकाम दिया और सही खिदमत खल करने का एक जज्बा दिया आपको, जो अभी भी मैं समझता हूँ कि जो आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ स्टूडियो में आए, अपनी व्हील चेयर में आप पाए,
1: आपकी कमाल कर दिया आपने, आई शेयर कर या मुझे वक्त दिया, मैं हैरान हूँ।
0: रख दिया
1: अगर याद हो ये।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद
1: तो नाम
0: अजी बस्तान साहब
1: यार नाम भी उठ जाते कोई कभी वो करेंगे ये तो खामोश था, सुन रहा था पुलिस वाले थे खामोश था, तो सारे रात हो जाएंगे तो फिर ठीक है अच्छा मैं बोलता हूँ फिर यहाँ रहे थे जर्नल में तो परसेंट मैं तो मीरपुर इंसान उनका मुल्क है तो उनका वहाँ पुलिस एक दूसरे को देख रहे
0: ये क्या कह रहे
1: हैं मैं ओके कम ऑन योर आवर कंट्री country
0: jee.
1: Okay but it's your right to it's not that's no. their job
0: bilkul
1: job
0: jee
1: you know yahi likha tha
0: acha
1: bilkul you be a member
0: EDL is one member acha
1: कर दूसरे
0: जी जी थोड़े हैं, थोड़े हैं।
1: तो करें आप दूसरे
0: ऐसा रास्ता तलाश करें जो अमन का रास्ता हो जी जी जी
1: तो शफी तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, मैं वहाँ मैं जब गया तो मेरे बच्चे स्कूल जब वहाँ से स्कूल से आए तो किसी बच्ची ने उनको जरा किया तो मैंने उसको समझाया, बहरहाल वो तो बच्ची थी समझ गई छोटी तो 6-7 साल की थी, तो उसके बाद उस जमाने में ये था
0: ठीक
1: तो अब का जो है वो लड़की 20 साल 25 साल 18 साल और बहुत तंग किया। जब उन्हें तंग इसको कहा तो कहने ठीक, मैंने कहा ओके पर दे दो, मिसअप कर गया दूसरे तीसरे से अपनों से कहा सब सब कर। मैंने कहा ये अजीब बात है, मैंने कहा समय समय नेक्स्ट डोर
0: अच्छा
1: मौसम का भाव चना मैं दरख्त है हमारे उनके हाथ में
0: ठीक
1: और फिर तो वो मैंने कहा
0: बिल्कुल
1: समथिंग
0: अब तुम करो कुछ
1: मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी अब तुम
0: जुबान में
1: हाँ वो
0: जी जी जी
1: बात है तो
0: रखा अच्छा
1: खतरा
0: जी जी जी तो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ अपने नहीं होते
1: मैं मना किया था कारी इस्माइली साहब को मैंने मना किया कि छोड़िए मत करो ये स्पर्शेशन तो मेरा उनसे झगड़ा हुआ पुलिस आ गई मैंने पुलिस में गो टू अरेस्ट यू मेरे को और फॉर तो इस पर मुझे गुस्सा आया मैंने कहा दे माय हाउस आई डिड नॉट गो टू देयर हाउस यू आस्किंग मी फॉर अरेस्टिंग फॉर क्राइम
0: ठीक
1: वो आदमी मैंने कहा यू आप शफील
0: अच्छा
1: जो गुस्सा है जोर से शाउट मैंने सुन वो गया तो एक औरत आई सार्जन कंधे पे हाथ रखा मिस्टर सिद्दीक कैन टॉक प्लीज कैन टॉक प्लीज मैंने कहा ठीक है अब चलता हूँ मैंने कहा ओके लेट्स गो इन अंदर बैठे तो वो भी पुलिस वाली तो क्या मैंने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू If you provide the house number, their address is you brought for me there, then I will show to you. I will do what shall
0: I do? What I need to do? Tick.
1: Huh? So when you got it, now something later. I'm. To see my solicitor, right? And I'm going to do against all of them.
0: Okay.
1: Because they attack me in my home or disturb my family home.
0: Harass kar rahe hain.
1: So, barhal, thodi der soch kar na. Ab wo. their future
0: acha acha acha acha bilkul rukh badal diya
1: bas ab you have future
0: ha criminal
1: yeah that will go so their job there no not good that this children will not come here again this side.
0: मेरे साथ फिर डील हो जाती
1: है. I'm not going to try their future.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कंप्रोमाइज़ दिया आपने. अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: They would come this side. They give guarantee. Make a world. Thank you very much. They are safe.
0: Okay.
1: I think my children as well. Okay. How much destroy their future?
0: हाँ बेशक वो नादानी कर रहे हैं.
1: हाँ ही तो.
0: हाँ.
1: Environment.
0: जी जी जी.
1: पर यार. I'm not. No, I'm okay.
0: उसके बाद अमन हो गया. इस तरफ नहीं आए. माशाल्लाह. कारी साहब माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? जी जी जी.
1: और बेटी मेरी फौत हो गई.
0: जी जी
1: अल्लाह बख्शे. और एक लड़का है अम्मार.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह.
1: और एक बेटी है.
0: जी जी जी.
1: इससे मुझे बहुत ही प्यार था. 10 साल हमने लाहौर में गुजारे इसी 47 में. क्या जिंदगी थी यार. लोग जो तेरे कहते थे मिसालें देते थे. हाँ. और वो पता क्या उसके एक नुक्ता बताऊँ.
0: जी. अच्छा.
1: तो हम मैंने बुक साहिब वाली तो हम बैठे हुए थे. तो मैं उसे कह रहा था कि वो मस्जिद वहाँ मस्जिद ही बहुत बेहतरीन मस्जिद की तरह.
0: अच्छा.
1: तो मैं उसे कह रहा हूँ तो देखो ना कितनी खूबसूरत मस्जिद है.
0: हाँ.
1: तो वो नहीं देख रही.
0: अच्छा.
1: मैंने फिर कहा ना देखो ना कितनी खूबसूरत मस्जिद है. तो वो नहीं देख रही. फिर मैंने तीसरी दफ़े कहा कि यार देखो ना कि मस्जिद की खूबसूरत है. वो देखो सामने उसके प्लान लान है ये है फूल लगी हुई. तो
0: अच्छा. माशाल्लाह.
1: तो कहने तो देख रही हूँ.
0: मैं तो देख रही हूँ.
1: चाह रहा था.
0: जी जी जी जी जी.
1: हज़रत आयशा जी तो एक भाभी वो तो रसूल ने फरमाया कि तो ऐसा नहीं कहा कि यार रसूल वो तो अंधा है. कहना वो तो अंधा तुम तो
0: अंधी नहीं हो.
1: तो ऊँची बात भी नहीं. तो वो एक भी थी अंधा था लगा.
0: अल्लाह ने जी जन्नत में आला और मुकाम अता फरमाया.
1: फिर एक और शादी की उससे उससे एक लड़का है. शादी तीन की हैं लेकिन आला.
0: जी जी जी.
1: फिर ये मेरी मामूजाद भाई है बहन लगती है. मिजाज था वो मेरी तबीयत के मुताबिक था. अल्लाह ने किया कि इसने मेरे साथ दिया हर तरीके से.
0: जी जी जी. देखा तो, ये बात है.
1: और अगर या घर
0: जन्म बन जाता है.
1: हकीकत बता रहा हूँ.
0: अल्लाह ताला हर एक को अच्छी बीवी.
1: अच्छा.
0: अल्लाह ताला उन अपनी अपनी जो उनकी जोजा हैं उनकी भी जो हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए. क्योंकि दोनों तरफ ये चीज़ चलती है. एक तरफ नहीं होती है तभी ये गाली चलती रहती है. आई साहब करी साहब आपका माशाल्लाह जो रोल मैंने देखा है. मैंने पाकिस्तान सेंटर की भी बात की मसाजिद की बात की है कॉमर्स की बात की पुलिस की बात की. हर जगह आप मुतरक रहे हैं क्योंकि एक कौम की खिदमत करते रहे. लेकिन वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ आपके और बच्चों में नहीं लेकिन आपकी बेटी में शायद हमें ये चीज़ पाई जाती है, वो एक बड़ी फिक्रमंद रहती है हमेशा कौम के मतलब, और बड़ी होनहार बेटी है, अल्लाह ताला उसे कामयाबियाँ अता फरमाए।
1: बस मेरा अमार वो भी चेरी जी काम खैराती करता रहता है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: एक दफा सोमालिया, एक दफा पता नहीं कहीं और।
0: अच्छा
1: जी वो हमारे साथियों को डील में उनके साथ वो मुझे मजबूर करते हैं तो मैं चले जाते
0: चले जाते हैं
1: आपकी दुकान थे ओ, आपकी दुकान थी पहले
0: जी,
1: वहाँ आपके बाद वाले साहब थे
0: चाचा जान,
1: हाँ
0: चाचा जान,
1: हाँ मुझे याद है उनकी, समझे ना, तो उसके साथ इस तरफ
0: अच्छा
1: छोड़कर
0: वो आप रिटेलिंग करते रहे, वो डिटेलिंग करते आप हमारे लिए एक बहुत ही कीमती सरमाया है। यकीन मानिए कि जो मैं अब आज आपके साथ जो पर्सनल जो चीज़ें शेयर करता हूँ, हमें याद है कि एक वक्त ये था कि यहाँ जब पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में जो मामलात वगैरह चलते थे उस वक्त कोई ऑफिसरान या शामन उनका नाम तो नहीं मैं लेना चाहता था, लेकिन आपने जो जुर्रतमंदाना उस वक्त जो जज्बे और उसको ऑफिसर कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए जो मर्ज़ी हम इस चीज़ को ना देने वाले ना छोड़ने वाले हैं, जो कुछ करना है आपने कर लो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम ज़रा छोटे थे हमें भी उसमें बड़ी एक हिम्मत मिलती थी कि कोई ऐसे हमारे साथ पीछे है कि जो अगर मुश्किल वक्त आया तभी हमारे साथ, ये हमें जाना।
1: मैं तो हमेशा जितने भी थे लोग तो फ़र्क करते तो फ़र्क नहीं करता ना जी, मेरी नज़र मुसलमान है
0: जी जी जी जी जी,
1: चाचा जलालुद्दीन और वो
0: जी जी
1: सारे जख्मी हो गए थे तो वहाँ जो मान साहब थे
0: जी जी जी जी जी जी
1: मुफ्ती मस्जिद वो जो जगह थी
0: जी जी जी
1: वहाँ पर इमाम थे ना, तो फिर वो राज गए थे
0: जी जी
1: वहाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं फला, तो वहाँ मस्जिद के पास भी आ गए तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं कर ऐसे कर नाराज, मैंने कहा मुझसे आप
0: इत्तेफाक कर लेता
1: कुछ नहीं कर सकता तो और लड़े मस्जिद में आपको
0: मुझे पता है दीवार के मुतल पता था, ये नहीं पता आपने जी जी
1: जी ना पाक होती आप उसको अच्छा समझते हैं
0: इधर पढ़ ले आदि वो तो ये तारीख में ये चीजें पाई जाती हैं। मैं समझता हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होती है,
1: डॉक्टर बता
0: जी
1: जाते हैं वो अब खास मुरीदीन में
0: कारी साहब अभी
1: खत्म
0: प्रोग्राम का वक्त 2 घंटे हो चुके हैं आप अपने अखीले अल्फाज अदा करें
1: सब इस बात पे आता हूँ एक बता देते हूँ
0: जी
1: वहाँ तो मैं नाम भूल गया बस आदमी तो अपना छाती अपने पास रखो वो मैंने उनको और लेन के ये करो तो खत्म
2: Listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
5: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00-571-009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243

ये समझता है हरम में कुछ है, मियां भाई ये समझता है हरम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है।

0: उसका, फिर पयाम क्या तेरा, तू है जब सदा उसकी, आप बेसदा हो जो आदमी है।
1: लीजिए जनाब, सुन चुके आप ये कलाम। और क्या होता है कि अक्सर सभी कलाम आप जो इस वक्त सुन रहे हैं, हमें ये कवाली स्पेशल है और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको बताता चलूँ, अक्सर क्या होता है कि जो बाज़ुकात एक के बाद फिर दूसरा कलाम ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, तो इसलिए फिर क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है तो इन्जॉय किया करें आप। और अभी चलते हैं, सुनाते हैं आपको मज़ीद भी। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे होंगे सुबह सवेरे।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज। सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

अरे भाई बैठो अपनी जगह पे बैठो। मैं कहा आप बैठे अपनी जगह पे, इसी रखे।

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Hello everyone, my name is Leo.
3: My name is Azir Iqbal.
4: This is Dr. Shah Nawaz.
5: This is Counselor Shafiq Mohammed.
6: My name is Ibra Hussain.
7: This is Aftab Behman.
8: This is Ibrit Tabassum.
9: I'm Chris Lewis.
10: My name is Javed Rashid.
11: My name is Mohammed Maru.
12: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Link FM, your number one community radio station.

0: हां जी अज ते कल्ले कल्ले चावा चल रही
1: है भाई परदेसी उंज बड़ा टाइम टाइम करी फिरना आजकल से तू बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा है
2: मैं तो थानो की लगदा तुसी कल्ले चार रोड सब
1: बहुत अच्छा है लगदा तेरी भी चाह किधरे सही जगह ते डुल गई ते इंट्रोडक्शन
0: लाल साहब मिलो अपनी भाभी ना
1: है
0: सॉरी फ्लो से निकल गया होने वाली भाभी
1: हमने कहा होने वाली भाभी कैसी है ठीक है
3: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day Project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: सुनिए सुनिए सुनिए पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी गुलाब जामुन लड्डू रसमलाई फलूदा हलवा पूरी
5: समोसा चाट नमक पारी जलेबी गाजर हलवा हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई
4: लजीज चिकन पेस्ट्री लैम्ब पेस्ट्री सैंडविच चिकन पनीनी दही बल्ले और किबाब सब कुछ ही लाजवाब पार्ल बेकर्स 640 Stanyford Road शेफील्ड S94LP टेलीफोन 0114296092 पार्ल
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
6: Listening to Link FM.
7: Sheffield's very own community radio station.
8: Link FM.
9: Dil se dil ko milata, har rang, har awaz ko sajata. Aapka apna radio station. Dil se aapke saath.
10: Link FM Sheffield.
7: This is Link FM. Listen live online at linkfm.org.
11: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7.
16: Link FM.
15: Link FM, your number one community radio station.

था तेरी डालियों पर जब आशियां मारा, ए मौजे दिजला तू भी पहचानती है हमको, ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक

0: हो सकता है कि जो इंडिया के अंदर दूसरे मुल्क के अंदर हो उसको ना पता हो, लेकिन जो अगर आसमान की बुलंदी पर है उसको तो हर चीज़ का पता है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि आसमां दुनिया से जो बातल से दबने वाले मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल से हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर सब कुछ है, हम इस किस्म के झूठ फ्राड से इन चीज़ों से हम जो है वो इधर उधर नहीं हो सकते, हम नफसानी ख्वाहिशात में फंस नहीं सकते, हम खलूस नियत से इंशाल्लाह ये बड़े बड़े हमने काम किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है आज हमने अपने रास्ते पर। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद अल्लामा साहब सोई सोई हुई कौम को जो है वो जगाना चाह रहे हैं। अल्लामा साहब देखते हैं गफलत की नींद में है, ये सोए हुए इनको खबर ही नहीं है, ये सुबह शाम जो है वो रोटी खाना खा रहे हैं, कोई मिश्रण का नहीं है, सुबह शाम बाद अपना जो निज़ाम है वो चला रहे हैं, लेकिन असल में इनको फ्यूचर का, अपने मुस्तकबल का, अपना जो वक्त गुजरा उसको इनको खबर नहीं है। वो इस उम्मत मुसलमा को एक देखना चाहते हैं, वो इकट्ठे करना चाहते हैं, वो इत्तफाक और इत्तेहाद देखना चाहते हैं। और देखें ये बस आज देखें ना, मैंने पिछले वो शेर पेश भी किया था कि दुनिया के बुत को दूं मैं वो पहला घर खुदा का, दुनिया के बुत को दूं मैं पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बाँ हैं वो पास बाँ हमारा, हम उसके पास बाँ हैं वो पास बाँ हमारा। ये बात 1909-10 में नज़म लिखी गई, 117 साल तकरीबन 16 साल 15 साल हो चुके हैं जी। अल्लामा साहब की ये चाह थी, ख्वाहिश थी, और अल्लामा साहब कह रहे थे कि ये जो घर है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, ये हमारा घर जो है वो दुनिया के बुत कद्दू में पहला वो घर खुदा का, बाकी कितने कितने घर हैं लेकिन वो पहला ही घर जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया, आज तक वो है, वो मुसलमानों का किबला है, वो मुसलमानों की तरफ देख कर नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो क्या है कि हम हज करने के लिए जाते हैं, उम्रे करने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें हमारा सब कुछ है, लेकिन अल्लाह साहब फरमाते हैं वो हमारा पासबान है, वो हमें रास्ता दिखा रहा है, वो हमें हमारी मदद कर रहा है, वो हमारी पासबानी कर रहा है, वो हमारी देखभाल कर रहा है, इसलिए हम भी उसकी देखभाल अल्लाह ताला के फजल से। ये देखें एक वक्त आता है, आज हो सकता है कि कितने साल के बाद आज अल्लाह ताला ने एज ए मुल्क हमें ये तौफीक अता की है कि हम जो है किसी जगह पर चल रहे हैं। हम ये समझते हैं 100% हर चीज़ ठीक भी नहीं होती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या वो जो सोच अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है, वो सोच जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इकट्ठा करना चाहते हैं कि नील के साहिल से लेकर एक हूँ मुस्लिम अरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक, अफ्रीका से लेकर चाइना तक और सेंट्रल एशिया तक, एशिया तक, जनूबी एशिया तक, पूरे दुनिया में, मतलब उनका कहने का मकसद अल्लामा साहब ये था कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो है इकट्ठे हो जाएँ, एक रास्ते पर चल पड़े। अब जो है जहाँ तक इकट्ठा होने का तल्लक है, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। आज यकीन करें कि जो सबसे ऐसा दीन इस्लाम जो आखिरी किताब है अल्लाह की, अल्लाह के ये आखिरी नबी हैं, इनका जो चीज़ें उन्होंने हम तक छोड़ी हैं, आज मुसलमान अगर उन पर अमल करें, ये बात इन लोगों को बताना शुरू कर दे। अब देखें जिस इंसाफ के वक्त मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बार मैंने बड़ी डिटेल से किया था कि इंसाफ का जो निज़ाम है, अदल इंसाफ का, अब इन लोगों का जो अदल इंसाफ का जो निज़ाम, वो हमारे मुल्कों के ही मुल्कों से बेहतर है। अब अगर सोचें इस निज़ाम के अगर इन साइड आप चले जाएँ, ये जो सारे का सारा जो निज़ाम है इसको समझने की कोशिश करें, ये प्रोसिक्यूशन जिस तरह होती है सारी को समझें एक एक स्टेप के अंदर। मैंने एक दफ़ा ये पूरा प्रोग्राम किया था किस तरीके से ये कैसे ये प्रोग्राम चलते हैं, यकीन करें ये सारा, ये तो कुरान और हदीस की बात है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें बताई हैं। ये जो किस तरीके से एक मुजरम को पकड़ना, किस तरीके सारा निज़ाम, वो सारा कहने का मकसद सिर्फ जो है ये बात लंबी हो जाएगी। जिन लोगों ने तरक्की की, अगर किसी ने दयानदारी से तरक्की की, किसी ने जो है वो इज़्ज़त हासिल की, किसी ने दुनिया में तरक्की कर ली, तो वो सारे का सारा जो अगर वो काम जुड़ रहा है तो इसी दीन इस्लाम के साथ जुड़ रहा है। आज असल में हम चूँकि इस बात से पीछे रह गए, हमारी बात सुनने वाला नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं खोल कुरान पढ़ना, उन्हें देखना कैसे कुरान वाले, इन लोगों को हमारी किसी चीज़ से कोई नफरत नहीं है, नफरत हमसे है, फिर गुस्सा, फिर पंजाबी की मिसाल है कि कई दफ़ा कहन दुख जरा दाली पर कटना बंदा, समझे सब मेरी बात समझ गए आप, घी का दुख कभी हम दाल पर निकालते हैं, यानी मतलब यह है कि अगर इधर से हमें कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो हम इधर से करते हैं, कहने का मकसद ये है कि आज हमने अगर स्पेशल दुनिया के मुल्कों के अंदर आज अगर हम इस स्टेज पर आ जाएं कि हमने सच बोलना है, हमने अमली मुसलमान बनना है, हमने अल्लामा इकबाल की उन फरमूदात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, तो मुसलमान देखिए दीन ही अमन वाला है, ये तो पीस वाला मज़हब है, ये तो किसी को तंग ही नहीं करता, ये तो गरीबों की मदद करता है, अमीरों से टैक्स लेता है, हर चीज़ जो है फ्री तौर पर देता है, कर्ज लेने देने में सूद नहीं है, औरतों का बहुत बड़ा मुकाम इसने दिया है, इनको हर हिस्सा है इनका, हर चीज़ की मतलब या कोई निज़ाम ऐसा है ही नहीं जो मुकम्मल ज़ाबता याद जो है ये बार मौजूद ना हो। आज असल में गलती हमारी है कि हम असल में खुद इन इन दूसरी चीज़ों में जो है वो जा चुके हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर मुख्तलिफ सोच के अंदर जो है वो तफरीक हो चुके हैं, लिहाजा हमारे अंदर गलत चीज़ें पैदा हो चुकी हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज़ें शायद एज ए मजहबी तौर पर नऊज़ बिल्ला इनके इस ये अपने मजहब के मुताबिक ये चीज़ें कर रहे हैं, हालांकि उसका मजहब एक आदमी देखे चोरी कर रहा है उसका मजहब से क्या तल्लुक है जी, मजहब के अंदर तो उसकी सज़ा मौजूद है। इस तरीके से और किसी का कोई माल चोरी करना है, गलत काम करना है, बेशुमार चीज़ें जी हर चीज़ की, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें अगर हम गलत करें, इसका मतलब ये कि वो लोग जो हैं वो हमारी इन चीज़ों पर नज़र रखें। लिहाजा आज हमने एक बाअमल मुसलमान बनना है, मसाली मुसलमान बनना है, और जब हम मसाली मुसलमान बन जाएंगे, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर हम बाकी निज़ाम को छोड़ें, हम अपनी मसाजिद के इर्द गिर्द में सफाई का ख्याल रख दें, इर्द गिर्द पार्किंग का ख्याल रख दें, हम जो है वो गाड़ी खड़ी करने में दूसरे को तकलीफ़ देना ख़त्म कर दें, हम लड़ाई झगड़े वाला निज़ाम ख़त्म कर दें, हम जो है वो यानी आवाज़ को थोड़ा धीमी रखना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पर गाली गलोच ये गलत मैसेज लिखना ख़त्म कर दें, ये हमारे अंदर इखलाकियात का एक जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर जो जिसकी बहुत बड़ी कमी है वो हमारे अंदर आ जाए, तो फिर दुनिया तो आशाश करेगी जी। दुनिया हमारे साथ क्यों देखें, कोई आदमी लड़ रहा है, मिसाल मेरे साथ आपके साथ कोई आदमी लड़ाई कर रहा है किसी सोच की वजह से कर रहा है ना, अब जो है वो देखना तो ये है कि अपने आप पर नज़र दौड़ानी है, अपने आप को देखना है कि यार मैं तो कोई गलत तो नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को ठीक करना शुरू कर दूंगा, बात ही ख़त्म है। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, गलत लाइन में जा रहा है, गलत साइड पर जा रहा है, तो हर आदमी हॉर्न उसको दे रहा है, कोई आवाज़ें कास रहा है, क्या कर रहा है, अब वो अपनी अगर दौड़ में लगा वो कह रहे नहीं मैंने परवाह ही कोई नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैंने तो ये है वो है, अगर वो सोचे यार हो सकता है मैं गलत ही हूँ, ये सारे लोग मुझे जो गाली गलोई दे रहे हैं, कोई मसला तो है। आज हमने अपने आप को देखना है, और यकीन करें ये कौन है, ये तसव्वुफ़ वाली, ये फ़कीर, ये बुज़ुर्ग, ये वली, ये अल्लाह के जो दोस्त हैं, ये जो एक रास्ता है फ़कर वाला, यही लोग कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को देखो, जिसने अपने आप को पहचानो उसने अल्लाह को पहचान लिया। आज तो हमने अपने आप को पहचाना मसला में दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, हमें तो अपनी डिटेल का पता नहीं है हमने कि हम किस तरह से हमारे अपने बुज़ुर्गों का हमारे पास कितना बायो डेटा है जी, हम दूसरे के बारे में सोचने जाते हैं, हम अपने घर का ख्याल रखने भी है, दूसरे घरों का ख्याल रखते हैं, यार खुदा रहा ये चीज़ें ख़त्म करें। आज हमारी इज़्ज़त और शान जो है अल्लाह और अल्लाह के नबी की वजह से है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, खैरिन उम्मत कहा गया है, ये सब उम्मतों से बेहतर उम्मत कही गई है, फरमाया गया है, अब बेहतर बनने का तरीकाकार एक ही है, अच्छे काम की तरफ रगबत दर्ज करना और इसके बाद जो है वो गलत कामों से रुकना, तो अल्लाह ताला में राय दायन सी। बहरहाल जी उलमा साहब कहते हैं कि ए गुलस्तान अंदलुस याद वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों पर जब आशा हमारा, कहते हैं कि जब ये पिछले हफ्ते मैंने से बात की थी कि मुसलमान जो थे अफ्रीका से, फिर जो है वो मूसा बिन नसीर ये बनू मैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक जो थे उनके दौर के अंदर, फिर उनको जो है वो तारक बिन ज़ियाद को ये हुक्म दिया कि अब वो गवर्नर थे अफ्रीका के, फिर वो मराको के अंदर और ये सारे जिब्राल्टर जो है ये इसके तकरीबन 710-715 के अंदर जो है ये कहते हैं कि ये फतह हो गया, और 750 तक जो है ये मुकम्मल जो है हुकूमत जो है सारी उनके जो है अंडर कंट्रोल रही। बहरहाल फिर तो बेशुमार हादसात होते हैं, फिर ये आस्ते आस्ते कि निज़ाम जो है, लेकिन जो बात ये है कि मुसलमानों ने 800 साल तक तकरीबन वहाँ पर हुकूमत की है, और देखें कि वहाँ पर जो है वो बेशुमार तारीखी जो मकामात हैं, वहाँ पर उनका रहन सहन का तरीका जो था, और यकीन करें कि यहाँ पर जो था इतने इतने बड़े तालीम के मरकज़ लोगों ने बना दिए, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बना दी, बड़ी बड़ी जो है वो यानी यकीन करें दरसगाहें बना दी, तालीम के जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लाइब्रेरियाँ बना दी, बड़े बड़े लोग जो है वो यहाँ पर आते, बड़े बड़े लोग इल्म सीखते, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े लोग यहाँ से पैदा हुए, उन्होंने बड़ी खिदमात जो है वो रखी। तो कहने का मतलब ये है ये बड़े बड़े फुका ये लोग इसी लिए जो है कुछ जब अदारे अच्छे होंगे मजबूत होंगे लोग अच्छे आगे निकलेंगे। तो बहरहाल ये 7-8 साल पे जो आपको पता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा जो मसला है वो जब फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थमे रखो वला तफर्राको, अल्लाह ने आर्डर आ गया जी, वो कहते हैं वला तफर्राको, इन्हें क्या मतलब है और तफरके में ना पड़ो, ला का मतलब जब दम पर ला आ जाए वो पर लाजम नफ़ी, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह यही है ना पहला लफ्ज़ है, इसका मतलब एक नफ़ी। अब जो है जब ये नफ़ी होगी तो फिर जब हम उस तरीके से कमर गए, अब हम ये है कि यकीन करें ये बरहाल हमारी अंदर बदकिस्मती है कि हम तकसीम दर तमसीम तो फिरके फिरका परस्ती में ये है वो है फलां बेहतर है फलां नहीं है, फिर कुर्सी की बात है, फिर ये है फिर वो है, एक को दिखा दो दूसरे को नाकाम करो, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, हम जो है तितर बितर हो चुके हैं, हम तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। तो दुआ गो है अल्लाह पाक इनको दोबारा एक इकट्ठा करे। यकीन करें वो एक वक्त वो इज़्ज़त का टाइम था, और फिर यकीन 800 साल की इनकी तारीख देखें जब ये इस तरीके से फिर जो इनको इस तरीके से निकाला गया, इनकी इस तरीके से तबाह बर्बाद किया, आप सोच नहीं सकते। बड़ा ये बहुत बड़ी तारीख है। तो कहते हैं कि गुलस्तान अंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा, ए मौजे दिजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसा हाँ अफसाना हाँ हमारा। अब जो है वो दरिया दिजला को कह रहे हैं, असल में ये जो दरिया दिजला ये बगदाद है। अब फिर ये तारीख का फिर वाकयात बड़े लंबे हैं। बनु उमैया का दौर जो है ये हज़रत माविया से शुरू होता है। अब वो जो दौर उन्होंने शुरू किया, इसके बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद को दे दिए हुकूमत, फिर ये करबला का वाकया पेश आया, ये सन 61 हिजरी के अंदर पेश आया। पर ये सिलसिला आगे चलता रहा, फिर उसका आगे बेटा, इस तरीके से निज़ाम चला। लेकिन तकरीबन जो है वो एग्जैक्ट तो इधर उधर तारीख की बात हो सकती है, बहरहाल तकरीबन कहते हैं 130 हिजरी तक जो है, यानी तकरीबन जो है वो यानी 60-70 साल जो है और ये बनू उमैया का दौर जो है वो चलता रहा। इसके अंदर बेशुमार जो है उनके बादशाह आए, जानशीन आए, आगे इस तरह चलता रहा। लेकिन कुछ चीज़ें उन लोगों ने भी अच्छी ही की, ये जो आप स्पेन की बात करें उन्हीं के दौर में ये फतह हुआ, और इस तरीके से बाकी दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बड़े अच्छे अदारे उन्होंने कायम किए, उनका उनके बादशाह बड़े अच्छे बादशाह भी गुजरे, लेकिन उनके दरमियान के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा ये वो। इसके बाद जो अब्बासी खुलफा, जो बाद में करना चाहता था कि ये जो अल्लामा साहब फरमाया कि ऐ मौजे दिजला तू भी पहचानती है हमको, अब दजला की मौज को कह रहे हैं। दरिया दिजला जो है कहते हैं, मैं तो जानवर इतफाक नहीं हुआ, बड़ी शौक है जी, ये देखें ये याद रखें कि तारीख ये इन मुल्कों में आने का मकसद बुनियादी जो है, एक बात चूँकि फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा बंदा, इन मुल्कों में अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी है, मुझे तो बहुत शौक है जी मुख्तलिफ जगहों पर जाने का, तारीखी मकामात देखने का, और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं हर आदमी को शौक होगा। लिहाजा ये ज़िंदगी अगर किसी के पास आलात फितर हैं, रुपया पैसा है, रुपये पैसे बगैर तो आप नहीं जा सकते किसी के पास आलात, तो मैं समझता हूँ इन इलाकों के अंदर भी जाकर देखे यार, वहाँ पर जाकर देखे तो पता चलेगा नहीं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, उसके एक इल्म में इजाफा भी होगा। मैं समझता हूँ बड़े भी इन लोगों ने बड़े बड़े आला जो है वो अपनी जो है अपने वक्त के अंदर बड़ी भी चीज़ें की हैं। बहरहाल वो बात जो हो रही थी, ये जो बगदाद शहर था, असल में ये जब बनु उमैया का दौर था तो ये हज़रत अमीर माविया से लेकर, ये इससे पहले हम बात करते हैं, जब ये खुलवाए राहतीन का ज़माना था उसमें मदीना मनवरा जो था ये समझे कि हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत ये होता था इस्लामी सल्तनत का। अब इसके बाद चूंकि इख्तलाफ वगैरह थे, ये उस वक्त जो है वो शाम के गवर्नर थे, शाम उस वक्त बड़ा बहुत बड़ा इलाका था, फिर इख्तलाफ वगैरह के बाद जब इन्होंने हुकूमत हज़रत अमीर माविया ने संभाली, तो इसके बाद ये फिर जो है ये दारुल खिलाफा उन्होंने वहाँ पर मुंतकिल दमिश्क के अंदर मुंतकिल कर दिया, शाम के अंदर वहाँ पर जो है वो उनका दारुल खिलाफा हो गया। अब जो है इसके बाद जब अब्बासी खुलफा आए, अब्बासियों ने जो है हज़रत इब्ने अब्बास की औलाद जो थी उन्होंने वो लोगों के साथ मिलकर जो इनके खिलाफ मुख्तलिफ तारीखें चलाईं, करते करते उनकी हुकूमत हर जगह से ख़त्म होगी। जब हुकूमत उनकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई तो फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ स्पेन के अलावा, ठीक है जी, बहरहाल जो है बाकी एक जंग पर हुकूमतें उनकी ख़त्म हुई, तो फिर वहाँ पर ये हुआ कि जब वो फिर ये अब्बासी खुलफा जो हैं उन्होंने उस दार खिलाफा को वहाँ से जो है वो इराक के अंदर बगदाद के अंदर मुंतकिल किया, और ये बगदाद जो है नियाज शहर ने डिवेल्प किया, नियाज शहर डिवेल्प किया। और अज़ामा साहब ने बिल्कुल यही कहा है, ए, ए, ए, ए, जो दजला की है, ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, यानी वो दरिया के किनारे साथ कहते हैं कि दरिया जो है उसके साथ बगदाद का शहर बड़ा खूबसूरत शहर बनाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना दी, बड़ी बड़ी दरसगाहें बना दी, बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ बनाया, और बड़ी खूबसूरत कहते हैं कि तकरीबन 4-5 साल तक उनकी हुकूमतें चली गई, या ज़्यादा भी हो, अरसा भी कम बेस ज़्यादा भी हो सकता है। फिर क्या हुआ कि आखिरी जो वक्त वो बादशाह था, क्योंकि वहाँ पर फिर उनके अंदर वो इख्तलाफ शुरू हो गए, इस तरीके से इधर से आज़ादी असर उधर से आज़ादी, बहुत बड़ी सल्तनत थी उस वक्त भी। फिर वो मंगोल आए, अल्लाकू खान जो है उन्होंने बगदाद पर हमला किया, और कहते हैं कि 2-4 लाख बंदा जो है, कुछ 7 लाख मतलब बहुत बड़ी तादाद जो है उसने मुसलमानों को कत्ल किया। इसके बाद सारे का सारा निज़ाम ख़त्म किया, इसके बाद जो है वो आग लगा दी पूरे बगदाद के अंदर, और वो दरिया दजला जो था, फिर वो किताबें जो थीं वो जो बगदाद के अंदर जो मुसलमानों में बहुत बड़ी लाइब्रेरियाँ थीं उनको जो है दरिया दजला में फेंक दिया। फिर वो कहते हैं कि उसका रंग पहले स्याह हो गया, फिर मुसलमानों के खून से वो सुर्ख हो गया। अब जो है वो अल्लामा साहब कहने का, फिर उसके बाद वो یہ بہت لمبی بات ہے. پھر لاکو خان وہ چنگ یہ جو ان کے پوتے جو ہیں وہ آگے مسلمان ہو گئے, پھر یہ جو ہمارے جو اوٹمن امپائر ہے سلطنت عثمانیہ یہ لوگ اس میں سے تھے بس ترکش جو تھے, پھر وہ آگے یہ سارے کا سارا. بہرحال بات اصل میں چونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے, بریک کا ٹائم آنے والا ہے, تو کہنے کا مقصد یہ علامہ صاحب کہتے یں کہ یہ جو دریائے دجلہ کی موئے سے کہہ رہے تو یہ تو ہمیں جانتی ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں, تو تجھے کتنا عزت بخشا, یہاں پر کیا کیا ہم نے کیا ہے, اور تو جو ہے ہماری افسانہ خواہ ہے. افسانہ اصل میں کہتے ہیں کسی تاریخ میں کسی ایک بات کو وضاحت سے پیش کرنا, بہر تو بہتر جو ہے جانتی ہے. تو بہرحال جی ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
1: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa.
5: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kirayani ni gaddi na accident hoi gaya hai, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unhana phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
6: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Tu sab kaan

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: तो सबका

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
2: जहां बातें बनते हैं, वही है Link FM। दिल से आपके साथ।
3: Link FM Sheffield।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Sheffield's Link FM. जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है Link FM.
0: दिल से आपके साथ
1: Link FM Sheffield.
0: हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ
1: Link FM

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
3: Link FM Sheffield.
4: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
5: Cook Studio, Season 15.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, द वॉइस ऑफ द कम्युनिटीज, 96.7 लिंक एफएम,
2: लिंक एफएम.
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
1: Link FM.
2: This is Link FM.
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। पर मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: Your very own community radio station.
1: Link FM.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्करा।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है Link FM.
0: दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.
4: किसी बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह मेरी शादी में पीछे तो नहीं खड़े रहोगे ना?

ये हजूम शहर सितम गरा न सुनेगा तेरी सदा कभी, ये हजूम शहर सितम गरा न सुनेगा तेरी सदा कभी, मेरी हसरतों को सुखन सुना, मेरी ख्वाहिशों से खिताब कर। अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर। 1439 के साथ साथ कई नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं।

और यही नशात आप डैब प्लस पे भी इस वक्त सुन रहे हैं, और अगर चाहें तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं। और सामीन हमारे इस वक्त की नशात आप लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पे भी सुन रहे हैं। और साथियों अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन नाज़रीन और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मोज़्ज़ज़ सुनने वाले इस वक्त जहाँ कहीं भी हमारी ये नसीहत सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे, अल्लाह सब आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अगर आप में से किसी की तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सभी को सेहत और सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामीन हस्पे मामूल हस्पे दस्तूर आज का ये प्रोग्राम भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल, पहले में आपके लिए हम कुछ गीत पेश करेंगे, कुछ आपकी पसंद के कुछ हमारी पसंद के, और इस प्रोग्राम के अगले दौर में अगले हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स का एहतमाम रहता है जिसमें आप मोहतरम और मुआज़ सुनने वाले तशरीफ लाते हैं, अपनी आवाज़ों का जादू जगाते हैं, शायरी सुनाते हैं, गीत गाते हैं और इस महफिल को चार चांद लगाते हैं। और अगर कोई भी गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश

0: जी सामियन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रंगे महफिल के इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा आप खुशअसलूबी से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हमारा मैं आप मुझे सुन रहे हैं बफर एजन रेडियो 1439 AM से। अगर आपको भी हमें कोई अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर, और आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें सुन सकते हैं www.prefortasianradio.co.uk। अगर आप हमें पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में या यूके से बाहर कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉड नंबर मिलाना ज़रूर याद रखिएगा 00447800599563 पर। उम्मीद करती हूँ आपको इस रंगे महफिल का ये गीत बहुत पसंद आएगा। ये गीत आप सभी लोगों के नाम पर।
1: कदे कोई वक्त नहीं कर सकता
2: जब तक
1: वो आप ना
2: चाहो

आहट सी कोई आए, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख को हाथ लगाते ही चमन में, शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का, झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। जब रात गए, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations.
2: Hi, my name is Safa
3: and my name is Zaina.
4: You are listening to Link FM 96.7 FM.
5: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
6: लिंक FM Sheffield।
7: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM।
8: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM। दिल से आपके साथ
6: लिंक FM Sheffield।

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
12: देखिए, 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर। ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
11: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: सिर्फ 100% से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
1: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229627222
0: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस योर चॉइस Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं बेफर एजन रेडियो 1439 AM पे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर। और अगर आप हमें यूके से बाहर सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी शेर व शायरी और गीत का कोई भी अच्छा सा लिंक हमें भेज सकते हैं और हमारे रेडियो में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिएगा, हमारा यूके का कोड नंबर मिलाना मत भूलिएगा, 00447800599563 पर। तो जी, आपके लिए पेश करते हैं अच्छी सी गजल। हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन। अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, यार वो भी क्या दिन थे, तुमको भी संवारा मोहसिन। अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके, अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके, हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन। और हमको मालूम है, और हमको मालूम है लौट कर आना तेरा, नहीं मुमकिन फिर भी खुदारा मोहसिन।

0: और समीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और वसी शाह लिखते हैं कि अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं किस हदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं किस हदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। और इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, मेरे चेहरे पे चमकता हुआ आंचल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो।
1: बहुत।

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम लाइव सेशन भी टिकटॉक पे जा रहा है, अगर आप हमें वहां पे कैच करना चाहें, देखना चाहें तो आप आ सकते हैं। जी हाँ, टिकटॉक पे हमारा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का चैनल इस वक्त बिल्कुल लाइव है और आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। शायरी भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत भी हैं, लेकिन गीत उस तरफ हम बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शायरी आपको सुना रहे हैं। तो जितने भी इस वक्त टिकटॉक पे हमारे साथ या ऑनलाइन जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सभी को हम खुश आमदेद कहते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी को बताते चलें। जी हाँ, स्टूडियो का फोन नंबर है 01274।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का 1430 AM पे अगर आप हमें सुनना चाह रहे हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
0: और व्हाट्सएप
1: जी, अगर आप हमें यूके से बाहर सुन रहे हैं और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है याद रखिएगा, हमारा कोड जरूर मिलाइएगा 00447800599563। ठीक है, 00447800599563 पर।
0: परफेक्ट। और अब अगले गीत से पहले आपको शायरी सुना दीजिए।
1: सुना दे तो चलिए जी, आपको सुनाते हैं। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे।
0: क्या कहें,
1: कभी नींद में कभी होश में, वो जहां मिला उसे देख कर, ना नजर मिली ना जबां हिली, यूं ही सर झुका कर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, वो जुदा हुए तो बिखर गए।
0: बहुत खूब।
1: कभी अर्श पर
0: कभी फर्श पर,
1: कभी उन किधर
0: कभी
1: दर बदर, कभी आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां से गुजर गए।
0: परवीन शाकर
1: की बहुत ही प्यारी सी गजल आपको सुनाई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा।
0: और अब दीवानापन सुनने वालों के लिए पेश करते हैं, और हमें जो भी गीत सुनना चाहें वो हमारी वेबसाइट पे जाइए। ठीक है,

0: जी सामीन, अभी हमें कॉलर की कॉल आई थी रुखसार साहब की, जो कि हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद है, मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से हमें कॉल आई थी रुखसार साहब की, बहुत ही मौजूद इंसान है और हमें ऑलवेज कॉल करते हैं हमारे स्टूडियो पे, अच्छी अच्छी सी शेर व शायरी सुनाते हैं, गजल सुनाते हैं। तो क्यों ना मैं भी आपको एक गजल सुना दूं?
1: जी जी जरूर।
0: तो ये हीर की तरफ से है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी तबीयत से रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों हुआ पशिमा दरिया हमसे, मुद्दतों हुआ परेशान दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। मुद्दतों बाद खुली वस्ते सहरा हमस पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। मुद्दतों बाद मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, क्या बात है, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई।
1: और अब
0: आसानी से मिलती नहीं पन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पर रवानी आई।
1: क्या कहने क्या कहने। और अभी हमारे साथ लाइन पे थे,
0: थैंक यू हियर फॉर द रोज,
1: रुखसार चौधरी साहब। तो उन्होंने गीत सुनना चाहा, सूरज हुआ मद्दम, तो उनके नाम करते हैं।
0: चलें जी, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम।
2: कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते।

0: और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया है तो आपको बताते चलें कि आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ केंद्र से आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशियात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं ब्रेडफोर्ड में, और इस वक्त की ये नशियात आप लिंक FM शेफील्ड से भी 96.7 FM के जरिए सुन रहे हैं। और अब वक्त है जब आप सुनने वालों की हम लाइव कॉलर से मुलाकात करवाते हैं, और आज टिकटॉक लाइव पे भी साथ साथ हम चल रहे हैं, तो उस एतबार से हमारे बहुत से सुनने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी सना, आप बताइए कौन है हमारे साथ?
1: हमारे साथ UAE से हमारी कॉलर है, आई डोंट केयर के नाम से।
0: जी जी, आई डोंट केयर। जी जी, अपना नाम बता दीजिए मोहतरम, ताकि आपसे भी बात हो सके।
2: बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मेरा नाम अब्दुल्ला है।
0: अब्दुल्ला, आपका नाम अब्दुल्ला है? जी जी। अच्छा जी जी, तो अब्दुल्ला आपको खुश आमदेद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में, और बताइएगा आज के इस प्रोग्राम में आप कौन सा कलाम शामिल करेंगे?
2: बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज्जत से नवाजी, और मैं अहमद फराज साहब का एक कलाम है, मैं वो सुनाऊंगा।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
2: बहुत शुक्रिया। अहमद फराज साहब फरमाते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं,
0: क्या कहने वाह,
2: सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: सुना है रब्त है उसको खराब हालों से,
0: क्या कहने,
2: सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं,
0: क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।
0: हाँ हाँ, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।
1: बहुत,
0: वो कहते ना कि मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, आज से एक और दीवाना हमारा हो गया।
1: वाह क्या बात है,
2: बहुत अच्छे। सुना है उसे भी है शेर व शायरी से शगफ,
0: वाह वाह,
2: सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं।
0: बहुत खूब,
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
0: क्या कहने,
2: ये बात है तो
0: चलो बात करके देखते हैं। और मुझे इससे बशीर बद्र का वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है।
2: बहुत अच्छे, क्या कहने। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है,
0: आहा खूब है,
2: सितारे बामे फलक से उतर के
0: देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं,
0: आहा,
2: सुना है रात को जुगनू
0: ठहर के देखते हैं। ये शेर फिर से पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर
0: के देखते हैं। और मुझे परवीन शाकिर का इससे वो अक्सर शेर याद आ जाता है कि जुगनू को दिन की लो में परखने की जिद करें, जुगनू को दिन की लो में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए।
2: बहुत अच्छे, क्या कहने। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें,
0: वाह वाह,
2: सुना है उसको हिरन दश्त
0: भर के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत
2: बहुत शुक्रिया। सुना है रात से बढ़कर हैं काकले उसकी,
0: वाह वाह,
2: सुना है उसको साए गुजर के देखते
0: हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं,
0: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं,
2: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं।
0: क्या कहने, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, क्या मिसरा है, वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। सुना है आईने तमसाल है जबीन उसकी,
0: जबीन उसकी,
2: सुना है आईने तमसाल है जबीन उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर
0: के देखते हैं। बहुत
1: बहुत
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है जब से हम आयल है उसकी गर्दन में मिजाज और
0: ही लालो गोहर के देखते हैं, क्या कहने, क्या कहने,
2: बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप। और सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इमकान है,
0: इमकान तक। हाँ
2: पलंग जाविये उसकी कमर के
0: कमर के
2: देखते हैं।
0: देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है
0: क्या कहने,
2: कि फूल अपनी
0: कबाहें
2: कमाए
0: कतर के
2: उतर के देखते हैं।
0: देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।
2: बहुत शुक्रिया। और वो सरोकद है मगर बेगुले मुराद नहीं,
0: हाँ, वो सर कद
2: क्यों
0: है मगर
2: शजर पे,
0: बेगुले मुराद नहीं। हाँ
2: वो सरोकद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उस शजर पे शगुफे समर के
0: समर के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं
1: बहुत
0: क्या
1: खूब,
0: कहने, क्या
1: बहुत
0: कहने।
1: अच्छे,
2: बहुत
1: बहुत अच्छे।
2: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का,
0: हाँ
2: सोरे रवान तमन्ना भी

0: उसके शबिस्तां से मुत्तसिल
1: मुत्तसिल
0: है
1: है बहरिश्त
0: बहिश्ते,
1: मकी
0: मकी
1: उधर
0: उधर
1: के
0: के
1: भी
0: भी
1: जलवे
0: जलवे
1: इधर
0: इधर
1: के
0: के
1: देखते
0: देखते
1: हैं।
0: हैं।
1: क्या कहने,
0: और वो शुक्रिया रुके तो गर्दिशें उनका उसका
1: तवाफ
0: तवाफ
1: करती
0: करती
1: हैं।
0: हैं,
1: हाँ
0: रुके तो गर्दिशें उसका
1: हाँ तवाफ
0: तवाफ
1: करती
0: करती
1: हैं।
0: हैं,
1: चलिए,
0: चले तो जमाने ठहर के देखते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। क्या कहने,
0: ठहर के
1: बहुत
0: देखते
1: अच्छे,
0: हैं। बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया। और किसे नसीब की बेपेरहन
1: उसे
0: उसे
1: देखिए।
0: देखे,
1: हाँ हाँ
0: कभी कभी दरो
1: दरो दीवार
0: दीवार गर्द
1: घर के
0: देखते
1: देखते
0: हैं।
1: हैं। बहुत खूब, बहुत खूब
0: बहुत बहुत
1: फरहान
0: शुक्रिया। और कहानियां ही सही,
1: सब।
0: सब मुबालगे ही सही,
1: हाँ हाँ
0: अगर वो ख्वाब
1: ख्वाब
0: है तो ताबीर करके
1: करके
0: देखते
1: देखते
0: हैं।
1: हैं। बहुत खूब
0: बहुत शुक्रिया। और आखिर में
1: फराज
0: शेर आखिर, अब उसके शहर में
1: ठहरे
0: ठहरे की
1: कि
0: कूच
1: कुछ
0: कर
1: कर
0: जाए,
1: जाए,
0: अब उसके शहर में ठहरे
1: ठहरे
0: की
1: कि
0: कूच
1: कुछ
0: कर
1: कर जाए।
0: जाए,
1: फराज
0: फराज
1: आओ
0: आओ सितारे
1: सितारे
0: सफर के
1: सफर के
0: देखते हैं।
1: देखते हैं।
0: क्या बात
1: क्या
0: है,
1: कहने
0: बहुत
1: फराज
0: खूब,
1: के,
0: बहुत
1: क्या कहने।
0: शुक्रिया, बिग अप्लॉज
1: बहुत
0: रहे हैं,
1: खूब,
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: खूब, बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। तशरीफ लाते रहिएगा, बहुत खुशी हुई। और आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं सारे का सारा प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइव कॉल ही हम देंगे, लेकिन जो गीत वगैरह हैं वो
0: जी बहुत
1: आप
0: शुक्रिया,
1: ऑनलाइन
0: सलामत
1: सुन सकते हैं।
0: रहे।
1: www.bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट है।
2: और अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कॉल करना चाहते हैं या अपना कोई गीत हमें सेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो 0044 कोड ज़रूर मिलाइएगा। उसके बाद आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज़ कीजिएगा 7800599563 पर।
1: और जी हाँ, सगीर साहब आपने शेफील्ड से हमें याद किया था, बेहद शुक्रिया आपका अदा करते हैं। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं तो आप भी कॉल मिला सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप जानते ही हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 के जरिए आज की इस महफिल में आप शिरकत कर सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। आपके पास कुछ कलाम है सुनाने को?
2: मैं
1: जी
2: चेक
1: जी
2: कर लेती हूँ, कोई
1: जी
2: अच्छा
1: जी
2: सा सुनाना
1: और
2: है आपको।
1: इतने में यूं है कि एक खूबसूरत गीत हम सुनाते हैं, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, हम इधर बिल्कुल ऑफ सिर्फ रेडियो पे जाएगा, तो सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं और इंतजार करते हैं अपने अगले सामे का। जी जी
2: जी यहाँ पे

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: देख ले
0: इकबाल
1: आवाज़ आ
0: भाई
1: रही है।
0: आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, आज ना जाने क्या हो रहा है कि फोन लाइन्स बिल्कुल सही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हेलो, लग रहा है कि ये लाइन पे ही है लेकिन इनकी आवाज आ नहीं रही है। जी इकबाल भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक डायलॉग सुना दीजिए जो आपने सुनाना था। नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, या आप दोबारा कॉल काट के दोबारा कर लीजिए। हाँ जी हाँ, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, और तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरी आंखों को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। और ये खूबसूरत शायरी आप सभी सुनने वालों के नाम, और आप देख सकते हैं कि हमारे फोन की लाइट झिलमिल करती रहती है इसी तरह स्टूडियो में, लेकिन जब हम लाइव लेके जा रहे हैं तो आज न जाने कुछ इशू हो रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इकबाल भाई हमारे साथ लाइन पे हैं। अगर आप देख सकते हो तो आप देख सकते हैं कि फोन लाइन जो है वो झिलमिल कर रही है ब्लू लाइट, और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। यूं करते के साथ साथ आप सुनने वालों को एक गीत भी सुनाते हैं, ऐ मेरे हम सफर। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आ रहा होगा।

0: यूं करते हैं कि आप इकबाल भाई लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कहाँ गायब हो गए आप? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: मुझे आवाज नहीं आ रही
0: बिल्कुल,
1: आपकी।
0: आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सही आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी।
1: आप कैसे हैं सब?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आज कौन सा डायलॉग आप सुनने वालों को सुनाएंगे?
1: मैं तो ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दफा मुलाकात भी हुई
0: जी
1: थी।
0: जी बिल्कुल ऐसे।
1: तो आज मैंने एक प्रेजेंटर को सुबह कॉल की, जो आयशा थी मेरे ख्याल।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: मैंने वो अपने अंदाज में बात की तो वो डर गई।
0: आप डरा देते हैं, अमिताभ बच्चन जब बनते हैं ना आप, पता है उनकी आवाज में ये डायलॉग सुना।
1: आपने कितनी आवाज चेंज करके आती है आप।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो चलो मैं आपको सुना देता हूँ फिल्म दीवार का डायलॉग। तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर पिक्चर आई हुई थी ये फिल्म। तो यहाँ पहली बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अमिताभ अपनी माँ के लिए भगवान के पास जाते हैं और दुआ मांगते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: कहता है, आज खुश तो बहुत होंगे तुम कि मैं हार गया, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा।
0: अच्छा अच्छा।
1: जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। मेरा बाप जी तो जी मर गया, मेरी माँ स्वर्ग होते भी विधवा बनी रही, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। मेरी गुलाम की सजा मेरी माँ को मत दो, जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे मेरी माँ दे दो, मेरी माँ दे दो, मेरी माँ दे दो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और रजिया सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे, इकबाल BD5 से शुक्रिया इनका अदा करते हैं, हमेशा खूबसूरत डायलाग्स सुनाते हैं और हमारे सुनने वाले इनके डायलाग्स बहुत पसंद करते हैं। आप अगर शायरी सुनाना चाहें आप शायरी सुना सकते हैं, अगर आप कोई गीत गाना चाहें गीत गा सकते हैं। तशरीफ़ लाइएगा, हम हैं आपके मुंतज़िर।

जी हाँ सामीन, अगर आप तशरीफ लाना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 के जरिए आज की इस महफिल में आप शिरकत कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 20-22 मिनट्स हैं, अगर आप तशरीफ लाना चाहें तो आप आ सकते हैं, आपको हम ऑन द एयर लेके जाएंगे।

0: और अब शकील साहब बड़ी
1: फाइनली
0: फाइनली हम उन्हें लाइन पे ले ही आए हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
2: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जी जी क्या हाल है आप? ठीक है खैरियत से? जी
2: जी आवाज आ रही है
0: जी
2: आपको?
0: जी परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज।
2: ठीक है, तो अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी
2: आप
0: जी
2: सुनाए कैसे?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है।
2: शुक्रिया। तो
0: जी जी
2: अरे तुम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
2: असली मीर साहब, ईश्वरी रुखसार साहब है, नवीद भाई है, शफीक शफीक साहब है, इकबाल भाई आए थे, उनको भी सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, सादिया बहन है, और जितने
0: जी जी आज वो भी आई थी बड़े अरसे बाद सादिया। जी जी ऐसे
2: उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो एक छोटी सी गजल है,
0: इनायत कीजिए।
2: मतीन नियाजी इनका नाम है।
0: मतीन नियाजी जी जी इनायत कीजिए।
2: वो कहते हैं आदमी और दर्द से ना आशना मुमकिन नहीं।
0: आदमी और दर्द से ना आशना मुमकिन नहीं, क्या कहने?
2: वक्त से खाली हो कोई आईना मुमकिन नहीं।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने?
2: आदमी इंसान इंसान कामिल बन तो सकता है मगर,
0: आहा
2: आदमी इंसान कामिल बन तो सकता है मगर जिंदगी भर रह सके वो पारसा
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
2: दो किनारे जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी।
0: दो किनारे जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी।
2: हमसे एक दाने जफा उनसे वफा मुमकिन नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: कार फरमा जब रहे घर के नजर आठों पैर।
0: आहा
2: शहर भर में हो न कोई हादसा
0: मुमकिन नहीं,
2: नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: किस कदर हिम्मत शिकन है गुम रही का ये जवाब।
0: आहा
2: किस कदर हिम्मत शिकन है गुम रही का ये जवाब।
0: आहा
2: राह भरी अज इब्तदा ता इंतहा
0: मुमकिन नहीं।
2: शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का।
0: शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का।
2: मिट के हो रहा बाद ऐवाने वफा मुमकिन
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
2: शीशे कहते हैं पत्थर को नचोड़े, पत्थर को नचोड़ने से क्या हासिल मतीन।
0: आहा
2: तंग दिल इंसान हो हक आशना
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी जी जी इनायत कीजिए।
2: अपनी खामोश है शोरों का अंदाजा नहीं होता।
0: आहा
2: मेरी बस्ती में हंगामों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: जिधर महसूस हो खुशबू उसी जानब बढ़ते चलो, जिधर महसूस हो खुशबू उसी जानब
0: बढ़ते चलो,
2: अंधेरी रात में रस्तों का अंदाजा नहीं होता।
0: आहा क्या कहने।
2: जो सदियों के कसक लेकर गुजर जाते हैं दुनिया से।
0: वाह वाह।
2: जो सदियों के
0: कसक लेकर गुजर जाते हैं दुनिया से,
2: मुवर्रख भी उन लम्हों का अंदाजा नहीं, मुवर्रख को भी उन
0: लम्हों का
2: अंदाजा
0: नहीं होता। नहीं होता। बहुत खूब।
2: ये राबर है कि राजन है, मसीहा है कि कातिल है।
0: क्या मिसरा है। वाह वाह।
2: ये राबर है कि राजन है,
0: मसीहा है कि कातिल है,
2: हमें अपने नुमाइंदों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हस्बे हाल है।
2: नजर हो लाख गहरी और बसीरत आशना फिर भी,
0: वाह वाह,
2: निकाबों में कभी चेहरों का अंदाजा नहीं,
0: नहीं होता।
2: जमीन पर आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है।
0: जमीन पे आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है।
2: बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब। फिर से पढ़िएगा।
2: जमीन पर आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है, बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता।
0: और मुझे भी एक शेर याद आया कि मोहब्बत को समझना है तो ऐ गाफिल मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ऐ गाफिल मोहब्बत कर, कि साहिल से कभी तूफान का अंदाजा नहीं होता।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं वफाओं के तसलसल से भी अक्सर टूट जाते हैं।
0: वाह वाह।
2: मोहब्बत के हसी रिश्तों का अंदाजा
0: नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब।
2: उतर जाते हैं रूह दिल में कितनी वसअतें लेकर,
0: वाह वाह,
2: तरे जाते हैं रूह दिल में कितनी
0: वसतें लेकर
2: बदल के दिल जबान लहजों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: तो आप ही कहते हैं सलीके से सजाना आईनों को वरना है रजमी।
0: वाह वाह।
2: सलीके से सजाना आईनों को वरना है
0: रजमी।
2: गलत रुख हो तो फिर चेहरों का
0: अंदाजा नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब।
2: ठीक है वरी
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई जिसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अजी हाँ, अभी जनाब शकील साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे। हमारे पास यूँ समझिए कि 15-16 मिनट्स हैं। अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें और आज के इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहें तो तशरीफ़ ला सकते हैं। और हमारे जितने भी टिक टॉक पर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन दोस्तों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप भी आना चाहें तो आप यहीं पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, टिकटॉक पे जितने भी दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना चाहें तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिए और फिर यहीं से हम आपकी आवाज़ रेडियो पे पहुँचा
1: देंगे। अहमद साहब की तरफ से आपके लिए एक सॉन्ग है, तो हीर बताएं अहमद साहब को कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: और जी हाँ, अब हमारे साथ जनाब रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
3: अब्बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। जनाब मोहतरम आली जनाब इज्जत माब साहब सदर ग्रामी कदर बा इज्जत बा वकार बा जोक बा शोक बहुत नफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक और बा रिफत मेरे प्यारे भाई मोहतरम हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम। और इन सभी अलकाबाद के लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपका बेहद शुक्रिया।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपके साथ जो हस्ती विराजमान है हमारे लिए नहायत काबिले इज्जत काबिले इत्राम काबिले रिफत जनाब मोहतरमा सना साहबा, उनको भी मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा नहायत मोहब्बत नहायत अकीदत नहायत उल्फत से बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम अदाब है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना म्यारी इतना उम्दा और इतना बिजी बिजी। हम तो मैंने सोचा कि आज शायद मैं कासर ही हो जाऊंगा आपसे बात करने से, यकीन करें, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत लकी है कि मैं मुझे ये शर्फ हासिल हो गया कि आपसे बात भी होगी है।
0: जी जी, आपका हमें इंतजार रहता है कि आप जैसे मुखलिस दोस्त जो हैं वही हमारे इस प्रोग्राम का असासा हैं, वही हमारा सरमाया है। जी
3: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला ये मोहब्बतें ये चाहते ये उल्फतें ये प्यार इसी तरह बरकरार रहे और इस रेडियो को अल्लाह ताला रोजे ता क्यामत इसी तरह बादो शाद रखे और इसी तरह ये हंसता मुस्कुराता रहे और इसकी पूरी टीम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और किसी का मोहताज ना।
0: आमीन आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी जी।
3: तो माशाल्लाह मुझसे पहले जो शख्सियात आई थी, मेरा ख्याल है अब मैं अरफे आखिर में मैं ही हूँ के ख्याल है, तो माशाल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक मैं सुन रहा था माशाल्लाह। और जो सभी शख्सियात आई थी और मुझसे हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत बेहतर बहुत उम्दा बहुत म्यारी और माशाल्लाह इतनी अच्छी माशाल्लाह पोएट्री गजल जो कुछ भी उन्होंने फरमाया लाजवाब था। इसी
0: बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए, बहुत नवाजिश।
3: तो सबसे पहले तो हमारे जनाब मोहतरम और हमारे ब्रॉडकास्टर सैयद तराब गदर साहब को जनाब बहुत बहुत सलाम दुआ। और
0: जी जी, आज तो तराब साहब जो है उनकी सेहत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो आज जल्दी गालबन सो गए होंगे मोहतरम की बिला।
3: मुझे आपसे शिकायत है आप उनका प्रोमो नहीं चलाते क्योंकि मैं सुनता ही रहता हूँ।
0: वो अगर उसका प्रोमो ना चलाया ना तो वो कहता है कि आप मेरे नाम से शोहरत पा रहे। देखिए मैं उसका प्रोमो अभी चला रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो कहेगा कि आप मेरे नाम से शोहरत पा रहे हैं, तो आपको मेरे जो है ना आपको मेरा प्रोमो नहीं चलाना चाहिए। चलिए आपकी फरमाइश पे मैं अभी लगाता हूँ उसका प्रोमो।
3: नहीं ये तो मरियन चलाना चाहिए यकीन करें, मैं सुनता रहता हूँ, मैंने कभी तो शायद आप चलाएंगे ना चले।
0: जी
3: वो
0: जी।
3: जैसे बोलते हैं ना वैसे माशाल्लाह कहता है कि अभी थोड़ा हैदर आज रहा क्या कहने उनके वहाँ।
0: जी जी ऐसे ही है माशाल्लाह, बड़ा एतमाद है उसमें। जी जी
3: क्या कहने क्या कहने।
0: जी जी।
3: और माशाल्लाह अभी उस्ताद मोहतरम किबला शकील साहब आए थे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे जनाब माशाल्लाह वो पोस्ट कर दिए हैं। और जंगीर साहब है, मुजफ्फर साहब है, महबूब लाई भाई है, शरीफ रियाज साहब है, राना रवीर साहब है, और भी जितने माशाल्लाह आपके माशाल्लाह इतने प्यारे और खूबसूरत लिसनर जो सुन रहे हैं, सभी को मोहब्बत भरा चाहत भरा नहायत अकीदत से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: और मैं जनाब मैं वैसे मेरा नाक तो नहीं बनना माशाल्लाह
0: जी जी जरूर अपना हिस्सा डालिए
3: लेकिन मैं तो फातान जो है ना वो एक पोएट्री आपकी नजर और तमाम सुनने वालों की नजर करना
0: जी जी इनायत कीजिए
3: शायद लिखता है उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा
0: उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा वसी शाह वाह वाह
3: एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा
0: क्या कहने फिर से पढ़िएगा वाह वाह
3: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप ये आपकी मोहब्बतें हैं आपकी चाहत है क्या लिखता है उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा
0: और रुखसार चौधरी साहब इसी से मिलता जुलता जनाब फराज का इतना प्यारा शेर था तो उसकी किसी ने पैरोडी बना के तो उसका बेड़ा गर्क किया था वो चलिए सुना ही देते हैं क्योंकि आप इतने प्यार से आए हैं तो इसी से मिलता जुलता शेर कुछ यूं था कि उसकी आंखों में मोहब्बत का नशा था फराज उसकी आंखों में मोहब्बत का नशा था फराज ये तो बाद में पता चला वो कमीनी चर्स पीती थी चलिए चलिए अब
1: आपकी प्यारी सी
0: जी जी वो शेर फिर से सुनाइएगा चलिए आप सुनाइए कि उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा
3: उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा एक दिन आएगा
0: वो शख्स हमारा होगा क्या कहने
3: जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना
0: वाह वाह जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना
3: अगर ये तय है कि यही खेल
0: दोबारा होगा बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया जिसके होने से सांस चला करती थी
0: आहा
3: इस तरह उसके बगैर अपना
0: गुजारा होगा बहुत खूब बहुत खूब
3: शुक्रिया इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है
0: इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है
3: और कुछ दिन में आया तो खसारा होगा
0: बहुत खूब वसी शाह के क्या कहने
3: कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में
0: कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में
3: मेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा
0: बहुत अच्छे
3: बहुत शुक्रिया जो मेरी रूह में बादल से गरजते हैं वसी
0: जो मेरी रूह में बादल से गरजते हैं वसी
3: उसने सीने में कोई दर्द उतारा होगा
0: बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ
0: जी जी
3: काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको
0: काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको
3: मेरे मौला का वसी जू ही
0: इशारा होगा बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया शाह साहब टाइम देने का अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आपको अपनी जमान में रखे और मैं आपके लिए बहुत ही दुआएं करता हूँ और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआओं में
0: अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे आमीन बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात और जी हाँ सामीन अब हमारे पास तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 7-8 मिनट्स हैं अगर हमारे कोई
1: और अहमद साहब के लिए अच्छा सा गीत लगा दें प्लीज उन्होंने
0: उधर अगर व्हाट्सएप टिकटॉक पे अगर हमारे कोई और सुनने वाले हैं तो हम ले लेते हैं
1: क्योंकि साहब हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है
0: चलिए एक गीत हम उनके नाम करते हैं
1: लेकिन साहब से कहिए कि इब्रार सलाम अर्ज कर रहे हैं
0: बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम इब्रार साहब वालेकुम अस्सलाम आप उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे ठीक होंगे कहां से
1: इब्रार भाई आप कहाँ से तशरीफ लेकर आए हैं शाह साहब पूछ रहे हैं जी इब्रार साहब आपको हमने लाइव पे ले लिए
0: एक सेकंड अभी पहले मेरे साथ लाइन पे हैं सगीर साहब शफील से इन्हें हम ले लेते हैं अस्सलाम वालेकुम शकील सगीर साहब
4: वालेकुम सलाम शाह साहब बड़ी मुश्किल से दीदावर पैदा होता है चमन में वो आज वही बात ही हमारे साथ
0: जी जी
4: बड़ी मुश्किल से मिली लाइन आपकी
0: जी जी चलिए मिल तो गई आखिर जी जी
4: नहीं वो कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है इस वजह से मिल गई
0: जी जी अल्लाह सलामत रखे और बहुत माजरत जो आपको दिक्कत उठानी पड़ी काल में
4: नहीं, कोई मसला नहीं मैं अच्छा वो सुन रहा था साथियों के बहुत सारे माशाल्लाह अच्छा पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छा नई तरफ से आप सब साथियों को बहुत सारा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
4: भी आपके गेस्ट आए उन सबको बहुत सारा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
4: और आपके जो को होस्ट है उनको भी सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
4: मेरे पास एक फराज की एक गजल है थोड़ी सी सुना दूं अगर
0: जी जी इनायत कीजिए इनायत कीजिए
4: कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ तो चल
0: बहुत अच्छे
4: कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ तो चलो बहुत कड़ा है
0: सफर थोड़ी देर साथ चलो बहुत खूब
4: तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है
0: ये जानता हूँ मगर थोड़ी देर साथ चलो,
4: कहां कोई साथ देता है ये जानता हूँ, मगर
0: थोड़ी देर
4: साथ तो चलो।
0: क्या खूब है, क्या खूब है, वाह वाह।
4: ये एक शब्द की मुलाकात
0: भी गनीमत,
4: गनीमत है।
0: क्या कहने,
4: ये एक शब्द
0: की मुलाकात भी गनीमत है।
4: कैसे है कल की खबर, थोड़ी देर साथ तो चलो।
0: किसे है कल की खबर, थोड़ी देर साथ चलो। बहुत खूब, बहुत खूब।
4: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के,
0: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के,
4: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी है दूर है सहर थोड़ी साथ चलो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब सुखीर साहब।
4: तो आफे मंजिल जाना हमें भी करना है, तो आफे मंजिल जाना हमें भी करना है, शादी तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो।
0: क्या कहने जी, क्या कहने। कहते ना कि मैं जिंदगी की धूप में जलने से बच गया, हाथों में आ गया तेरा आंचल किसी तरह जनाब।
4: माशाल्लाह। शाजी और सुनाए आप, ठीक है?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, ठीक ठाक है आप?
4: अभी आपके पास टाइम थोड़ा, फिर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट
0: जरूर
4: बैठे तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ कलाम सुनाएंगे। तो ये थोड़ी सी हमारी तरफ से जो ना मोदबाना गुजारिश किया आपको, कलाम थोड़ा सा, उम्मीद है आपको पसंद आया।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा आपका इंतखाब, बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाते रहिएगा, आपका इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।
4: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
4: हाफिज़।
0: और जी हाँ, अभी जनाब सगीर साहब शेफील्ड रादरम से हमारे साथ मौजूद थे। अब जो हमारे सुनने वाले हमारे साथ थे अभी मौजूद हैं,
1: हमारे साथ इब्रार साहब मौजूद हैं।
0: जी जी, इब्रार साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इब्रार साहब।
5: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है आप?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक है,
5: अल्लाह का करम है। मैं टेलफोर्ड से
0: आ रहा हूं। ओहो जनाबे वाला, जनाबे वाला, हमारे स्टूडियो की शान जान मान जनाब, क्या कहने आपके इब्रार हैदर साहब, खुश आमदीद।
5: बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखें, हम पहले दिन से आपको सुन रहे हैं, जब आपको कोई भी नहीं सुनता था तो आप सुना करते थे।
0: बिल्कुल, जब लॉन्च हुआ था स्टेशन, ऐसे ही है। बहुत यादें हैं आपसे वाबस्ता। जी जी, ऐसे ही। और उस दिन जो आपने हमारी रहनुमाई की थी, एक कॉन्टेक्ट हम ढूंढ रहे थे किसी पुराने साथी दोस्त का, और आपने जो मदद की थी, यकीन करें कि हमारी वो शाम बन गई थी। बड़ी यादें ताजा की बचपने की, वो हमारे जो गाँव के थे उनसे आपने हमारी मुलाकात करवाई, जिसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया था।
5: शुक्रिया आपका, बड़े टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई।
0: जी जी, ऐसे
5: सलामत रखे आपको, अपने सुअमान में रखे।
0: आमीन आमीन। तो हमारे पास सिर्फ यूं कह लीजिए कि दो तीन मिनट्स हैं, तो कुछ न कुछ अशार दो तीन तो कम अज कम सुना दीजिए। जो आप मुनासिब समझते हैं, लेकिन दो ही मिनट्स हैं हमारे पास
5: प्रोग्राम का। एक दो बोल सुनाते हैं आपको।
0: जी जी, इनायत।
5: देखिए,

0: बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया और इंशाल्लाह अगली महफिल में, अगले प्रोग्राम में आपका इंतजार रहेगा, जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जी हाँ सामिन, अब इसी के साथ ही इस आज का जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। और जी इसी के साथ ही अपने मेज़बान सैयद हसन को आज के रंगे महफिल से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दौरान प्रोग्राम अगर आपको कोई बात पसंद ना आई हो तो आपसे बहुत बहुत माज़रत।
1: जी आप मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपकी सना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा रंगे महफिल का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर लाइव। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.